मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 5:58 मिनट 44 सेकंड हुए। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में

0: पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए विचार मंथन।

उत्तम प्रकृति के लोग बार बार विघ्नों का प्रहार पड़ने पर भी आरंभ किए गए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते।

अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले सुनिए समोह स्वर में चंद्रसेन विराट की ये देशभक्ति रचना।

लता मंगेशकर के सुर में अभी आपने ये भजन सुना। और अब सुनिए पंडित कुमार गंधर्व का गाया ये भजन, रचना संत कबीर की है।

अभी आप पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में संत कबीर का ये भजन सुन रहे थे। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल का गाया ये भजन।

0: अभी आपने अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में ये भजन सुना। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन। श्रद्धा, विश्वास, आशा। आलेख श्री गिरिराज चाचा का है। वाचक है दिनेश नामदेव।
1: मानव जीवन और मानव धर्म के 3 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। प्रथम श्रद्धा, जिसे अंग्रेजी में फेथ कहते हैं। दूसरा है विश्वास, जिसे अंग्रेजी में ट्रस्ट कहते हैं। और तीसरा है आशा, जिसे अंग्रेजी में होप कहते हैं। ये तीनों शब्द देखने सुनने में बहुत छोटे और शक्तिहीन लगते हैं, पर जब आप इन पर चिंतन मनन कर क्रियाशील होते हैं तो ये इतना बड़ा काम करते हैं कि आपकी विचार शक्ति अप्रतिम ऊर्जा से भर जाती है और विजयश्री आपके इशारों पर चलने लगती है। यद्यपि शब्दों की व्याख्या हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है, पर इनको सहज सामान्य रूप में समझने से इनके प्रति हमारे मन में इन्हें अपनाने का भाव जागृत होगा। एक दृष्टांत से इन शब्दों की आत्मा को समझना और आसान होगा। शहर में वर्षा ऋतु में भी एकदम सूखा था। पानी नहीं गिरने से सभी नागरिक चिंतित थे। सभी को लग रहा था कि इस संकट से भगवान ही उबार सकते हैं। अतः एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में शहर के नागरिक बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, पर इस सभा में एक विशिष्ट उपस्थिति थी। वो एक बालक था। सभी की दृष्टि बार बार उस बालक की ओर जा रही थी। वो बालक छाता लेकर प्रार्थना सभा में आया था, क्योंकि उसे भगवान पर श्रद्धा थी। प्रार्थना पर श्रद्धा थी कि भगवान प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और वर्षा होगी। ये है फेथ का सरल रूप, इसे ही श्रद्धा कहते हैं। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। जब हम किसी छोटे बच्चे को उसके साथ अटखेलियां करते हुए उसे हवा में उछालते हैं, तब बच्चा बहुत प्रसन्न होता है।

है, खिलखिलाता है, क्योंकि बच्चे के मन में यह विश्वास रहता है कि जो हाथ उसे हवा में उछाल रहे हैं वे हाथ ही उसे संभालेंगे, अतः वह भयभीत नहीं होता। ये है ट्रस्ट का सरलतम रूप, इसे ही विश्वास कहा जाता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस सत्य को जानता है कि कल किसी ने नहीं देखा। आज हम हैं, कल रहेंगे कि नहीं इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं, फिर भी हम कल के कार्यक्रम निश्चित करते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और परिचितों के यहाँ जाने की योजना सोते समय दूसरे दिन के लिए बनाते हैं। ये है होप का सरलतम रूप, इसे ही आशा कहते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि आशा से आकाश थमा है। गीता का उपदेश है कि जीवन में जिस ऊंचाई पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने का आपको अनवरत प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य की आकांक्षाओं की सिद्धि श्रद्धा, विश्वास और आशा के अभिसिंचित कर्म से ही होगी। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कर्म करने का संदेश दिया है और कर्म करने के संदेश का प्रमुख आधार श्रद्धा, विश्वास और आशा ही है। वैसे सच तो ये है कि कर्म के बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। कर्म शून्य होने से समाज नहीं चलेगा, अतः प्रत्येक व्यक्ति को आशा और विश्वास के साथ कर्म करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास शरीर, हृदय और बुद्धि है। शरीर को कार्य करना चाहिए, कर्म में हृदय का प्रेम उतरना चाहिए और कर्म करते हुए बुद्धि को काम में लाना चाहिए। शरीर, हृदय और बुद्धि की त्रिवेणी ही श्रद्धा, विश्वास और आशा है। प्रसिद्ध विचारक साने गुरुजी की मान्यता है कि समाज को समयानुकूल नव विचार देने वाला मनुष्य जितना बड़ा है, समाज को अनाज देने वाला किसान भी उतना ही बड़ा है। तात्पर्य यह है कि किसी भी कर्म को छोटा नहीं समझना चाहिए। कर्म को सदैव श्रद्धा, विश्वास और आशा से परिपूरित रखा जाना चाहिए। यही आपके जीवन की जीवंतता का आधार है।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे चिंतन आलेख श्री गिरिराज चाचा का था, वाचक थे दिनेश नामदेव। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र, 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन, स्वर ए हरिहरन का है।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकई की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाए। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थी। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन, स्वर ए हरिहरन का था। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कृषि सामयिकी। इसमें आज किसान भाई सुने गौ पशुओं में तिल्ली ज्वर के बारे में जानकारी।
1: किसान भाई बहनों, आज बात करते हैं गौवंशीय पशुओं में तिल्ली ज्वर की। यह रोग प्रमुखतः गौवंशीय पशुओं में गाय, बैल, इनमें संक्रामक रोग के रूप में प्रभाव करता है। रोग प्रमुखतः क्षारीय या जो उदासीन भूमि होती है उसमें काफ़ी अधिक पनपता है, क्योंकि यहाँ पर इस बीमारी के जीवाणु भूमि के संपर्क में शीघ्र ही प्रभावशील हो जाते हैं। रोग के जीवाणु वायुमंडल से ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्पोर या कवक का निर्माण करते हैं। कवक का निर्माण जीवित पशु में नहीं होता है। रोग के जीवाणु पशु के शरीर में प्रवेश के बाद रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद या फिर श्वसन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन से जीवाणु विकसित होकर पशु में रोग का प्रभाव दिखाने लगते हैं। रोग के जीवाणु मिट्टी में 3 वर्ष तक निष्क्रिय स्थितियों में भी रह सकते हैं और पशु के संपर्क में आते ही मुख द्वार या शरीर में प्रवेश करके इस बीमारी को फैलाने में सहायक होते हैं। तिल्ली ज्वर में जब आप देखेंगे पशु 1 से 4 दिन के अंदर प्रभावित दिखने लगता है। मुख्यतः इसमें तेज बुखार, खूनी दस्त, लाल गाढ़ा रक्त नाक से बहता है, मुंह से बहता है और गुदा द्वार से निकलता है। पशु खाना पीना बंद कर देता है। दुधारू पशु एकदम से दूध देना बंद कर देते हैं।

0: और रोग से प्रभावित पशु की लगभग 3 से 5 दिन में मृत्यु हो जाती है। इस रोग का एक प्रकार तो त्वचा को भी प्रभावित करता है, जिसमें पशुओं के घाव में अचानक सूजन आ जाती है। मुख्यतः इस रोग का नाम तिल्ली ज्वर पड़ा है, उसमें तिल्ली का आकार बढ़ता है, विशेषकर मृत पशु के शरीर की तिल्ली जो होती है, स्प्लीन जिसको कहते हैं, वो अपने सामान्य आकार से 5 से 6 गुना बड़ी हो जाती है। इसलिए इसे तिल्ली बुखार भी कहा गया है। संक्रमित पशु का हृदय, यकृत और किडनी लाल रंग की और सूजी हुई हो जाती है। मृत पशु का रक्त शीघ्र जमता नहीं है, यह रक्त में बीमारी के जीवाणु के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। रोग का निदान रक्त परीक्षण से किया जाता है। रोगी पशु के रक्त में रोग के जीवाणु सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा परीक्षण करने पर नीले रंग के और चारों ओर से कवक बैंगनी रंग के दिखते हैं। इस रोग से प्रभावित पशु का मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के बाद शव परीक्षण नहीं किया जाता और मृत पशु को सीधे जमीन में गाड़ दिया जाता है और भूमि पर चूने से छिड़काव कर दिया जाता है, क्योंकि मृत पशु के जीवाणु वायु के संपर्क में आते ही प्रभावशाली हो जाते हैं और दूसरे पशुओं को प्रभावित कर सकते हैं। यह रोग मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीमार पशु के संपर्क में आने से या कोई घाव उसके संपर्क में आने से व्यक्ति में भी यह प्रभाव दिखा देता है। मनुष्य में यह बीमारी त्वचा के संक्रमण के रूप में पाई जाती है। कभी कभी यह बीमारी श्वसन तंत्र, जैसे कि हमारा फेफड़ा, इनको भी प्रभावित करती है। जब बीमारी के जीवाणु सांस लेते समय प्रवेश कर जाते हैं, इससे हमें निमोनिया या फेफड़ों में पानी भरने जैसी शिकायत हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ भी होती है। तो इस रोग के उपचार के 2-3 ही तरीके हैं। पहली बात तो पशु चिकित्सक से तुरंत उपचार कराएं, वो हाई एंटीबायोटिक्स के माध्यम से इसको ठीक करेंगे। और दूसरी सावधानी सबसे बड़ी ये होती है कि ये रोगी नहीं आएगा। जैसा कि अभी समय चल रहा है, इस समय आप तिल्ली बुखार के लिए टीकाकरण करवा सकते हैं। इसके टीकाकरण के लिए स्पोर वैक्सीन 1 मिलीलीटर वाली होती है, ये हर वर्ष लगाना होता है। 1 वर्ष तक इसकी प्रतिरोधक क्षमता रहती है।
1: कृषि सामयिकी में किसान भाई सुन रहे थे गौ पशुओं में तिल्ली ज्वर के बारे में जानकारी। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। 8:30 पर आपको सुनवाएंगे ये समन्वित कार्यक्रम में रूपक आकाशवाणी भोपाल से लोक रसदार लोक संगीत का ये कार्यक्रम होगा। सुबह 9 बजे कलाकार होंगे शोभित सिंह दुर्वे और राम प्रसाद सयाम।

9:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा गुलाम अली की गाई गजलें। वंदे मातरम गौरव गान की 1.5 सदी। ये कार्यक्रम होगा सुबह 10:05 पर।

ग्यारह बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम होगा। हमारी दूसरी सभा शाम 5 बजे आरंभ होगी न्यूज हेडलाइंस से। 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युवाणी। 5:33 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा, देशभक्ति फिल्मी गीत शाम 6:10 पर। 6:30 पर लोक संगीत में सुनिएगा रुद्रदत्त दुबे की गाय बुंदेली लोकगीत। सुगम संगीत में आज के कलाकार होंगी प्राजक्ता सावरकर। प्रसारण समय 6:45। शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गम्मत। रात 8 बजे सुर्खियों में भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। 8:30 पर फिल्म

संगीत रात 9:15 पर स्पॉटलाइट दिल्ली केंद्र से, 9:30 पर अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती, रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में और 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: नियुक्ताः भविष्यन्ति। भारतीय सैन्य अकादम्याः पासिंग आउट परेड न केवलं सैन्य परंपरा अस्ति, अपितु राष्ट्र सेवायां समर्पितानां युवाधिकारिणां कृते नूतन यात्रायाः आरम्भोऽपि अस्ति। केन्द्रीय गुरु उद्योग इस्पात मन्त्रिणा एचडी कुमारस्वामिना उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विनिर्माण आधारित वृद्धेः वृत्त्यावसर निर्माणस्य च विषये अभूतपूर्वं महत्त्वं प्रदत्तम्, येन औद्योगिक वृद्धिः त्वरिता अभवत्, बृहद् वृत्त्यावसराश्च कल्पिताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन सह वार्तालापं कृत्वा गल्फ प्रदेशे यूएस नौसेनया कृताक्रमणस्य विषये प्रबलं विरोधं प्रकटितं, यस्मिन् त्रयः भारतीयाः नाविकाः मृताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले एकस्मिन् लेखे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् वाणिज्यिक नौवहनं विरुद्धं एतादृशानि प्राणघातक आक्रमणानि न्यायोचितानि न सन्ति इति। ओमान तटस्य तटे पलाव ध्वजयुक्तस्य एमटी सेटेबेलो जलयानस्य उपरि अमेरिकादेशस्य आक्रमणे भारतीय दलस्य त्रयः सदस्याः मृताः, येन नवदिल्ल्यात् तीक्ष्ण प्रतिक्रिया प्रदत्ता। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः दृढतया उक्तवान् यत् ऑपरेशन सिंदूर अभियानस्य समये स्वदेशीय प्रक्षेपास्त्राणां असाधारणं प्रदर्शनं भारतस्य रक्षाशोधस्य विकास पर्यावरण व्यवस्थायाः वर्धमान शक्तेः परमाणम् अस्ति। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनस्य रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशालायां उन्नतास्त्र प्रणाली परिसरस्य उद्घाटनावधौ रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् शक्त्यै शान्तेः आवश्यकता अस्ति, तथा च तस्याः शक्तेः सर्वाधिकः विश्वसनीयाधारः आत्मनिर्भरता एव अस्ति। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे गतरात्रौ निरन्तरं द्वितीयरात्रौ प्रचण्डवृष्टिः अभवत्। वृष्ट्या सह मेघगर्जनं तीव्रवायुः विद्युद्योतनं चाभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन दिल्ल्याः तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृंखलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तानदलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफ्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के

राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में

0: कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में एससीओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 1593 किलो हर्ट्ज के साथ डीटीएच ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेब से ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।
2: जयशंकर स्पोक टू यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ओवर द अटैक्स बाय द यूएस नेवी इन द गल्फ दैट किल्ड 3 Indian mariners. In a post on social media platform, Dr. Jaishankar said, such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after 3 Indian crew members were killed in a US strike on the Palau flag tanker MT Sotobello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. The vessel had 24 Indian crew members on board, of whom 21 were rescued, while the 3 missing sailors were later confirmed dead. Following the incident, India lodged a strong protest with Washington and summoned the US Chartered Affairs in New Delhi. President Draupadi Murmu will review the passing out parade at the Indian Military Academy, Dehradun, today. This year's passing out parade is said to be historic as for the first time, women candidates will march alongside their male counterparts. In this grand ceremony, more than 500 gentlemen and lady cadets will take the first step and, I beg your pardon, will take the final step and be commissioned as officers in the Indian Army. The passing out parade of the Indian Military Academy is not merely a military tradition, but also marks the beginning of a new journey for young officers dedicated to serving the nation. Minister of State for External Affairs, Dr. Kirti Vardhan Singh, has said that Shanghai Cooperation Organization is not merely a regional grouping, but a vital link connecting India with its historical and civilizational partners across Eurasia. In his intervention at the SCO International Conference in Tajikistan, the MOS said, India's vision for cooperation within the SCO is guided by Prime Minister Narendra Modi's framework of security, connectivity and opportunity. He emphasized that Central Asia occupies a significant place in this vision. He added that it serves as a key node for enhancing regional connectivity

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज समापन। कृषि मंत्रियों की बैठक में साझा दस्तावेज पर लगेगी मुहर। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल दौरे पर, शूटर्स से मुलाकात, स्वच्छता अभियान और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। ये परेड इस बार ऐतिहासिक होगी क्योंकि पहली बार लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी परेड में शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक कैडेट सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पहल में 120 भारतीय इनोवेटर्स, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा श्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। ब्रातिस्लावा में वे स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे।

0: और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और आखिरी दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बैठक में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां, कृषि नवाचार और तकनीकी साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। सदस्य देश कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय सुधारने और टिकाऊ कृषि प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए साझा रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। वहीं कल हुई चर्चा में श्री चौहान ने कहा,
1: छोटे किसानों की बेहतर आजीविका के लिए, महिलाओं की भागीदारी और खेती में बढ़े इसके लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ब्रिक्स देशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आधी आबादी तो यहीं रहती है दुनिया की और 43% से ज्यादा उत्पादन यहाँ होता है। आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया, अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है। हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल गृह विभाग की समीक्षा बैठक में पुलिस बल को साइबर अपराधों से निपटने के लिए आईटी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों को जांच भत्ता देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा, भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नशा विरोधी अभियान को लगातार जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने 2028 के सिंहस्थ पर्व को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने के भी निर्देश दिए। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। डॉ. सोमनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की निष्पक्षता को किसी भी तरह से प्रभावित करने या छेड़छाड़ करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी द्वितीय अवसर परीक्षा का परिणाम कल शाम घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा में बेटियों ने बाजी मारी है। 62% से अधिक छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 57 से अधिक रहा। परीक्षा में शामिल 1,42,000 से अधिक विद्यार्थियों में से 84,871 विद्यार्थी सफल हुए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल के दौरे पर हैं। सुबह 7:30 बजे से वे शूटिंग एकेडमी में शूटर्स से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 8 बजे सूरजनगर में स्वच्छता अभियान में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रौद्योगिकी आधारित बनाने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने कहा कि अधिक से अधिक परीक्षाएं टैबलेट और कम्प्यूटर आधारित कराई जानी चाहिए, ताकि प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए आसान और जवाबदेह बने। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 47,000 से अधिक रिक्तियों के लिए 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती पूरी कर ली है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत क्रेडिट कार्ड आवेदन संग्रहण में प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश में अब तक 10,000 से अधिक क्रेडिट कार्ड आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। जिनमें से 500 से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये योजना शहरी पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही है। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग श्रद्धालु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज से 18 जून तक वैष्णो देवी धाम की यात्रा पर जाएंगे। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कल लाभार्थियों को यात्रा टिकट वितरित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं। कल जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी सहित कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों में भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर में 50 से 60 किलो

किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश हो सकती है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है, जबकि इंदौर, उज्जैन और आसपास के जिलों में तेज धूप खिली रहेगी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया। बर्मिंघम के एजवेस्टन मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 219 रन बनाए, जिसमें डैनी वैट हॉस ने शानदार नाबाद 105 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 132 रन पर ही सिमट गई। डैनी वैट हॉस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीमें भाग ले रही हैं। भारत का पहला मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने एक बैठक के दौरान शहर के पास बनाए गए बड़ौदी फूड पार्क में एक ही फर्म को प्लॉट अलॉटमेंट के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। खंडवा में निमाड़ क्लब परिसर में जिम, क्रिकेट टर्फ जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित की जाएंगी। आगर मालवा स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित किए गए विधिक जागरूकता शिविर में बच्चों को शिक्षित कर उनके शैक्षणिक विकास के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। मेहर कलेक्टर ने खदान से खनिज पदार्थ निकालने के बाद बिना क्लोजर प्रोटोकॉल का अनुपालन किए खुला छोड़ने से होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया है। झाबुआ में खरीफ की बोनी शुरू होने से उर्वरकों की मांग बढ़ी है। जिला प्रशासन ई विकास प्रणाली से वितरण पर नजर रखेगा। बैतूल जिले के आदिवासी विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत रंभा के रिंगधाना कस्बे में कल रात भीषण आग लग गई और आग ने करीब 15 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। मंडला कलेक्टर की अध्यक्षता में वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार दावों की समीक्षा की गई। शुजालपुर नगर पालिका परिसर में आयोजित जनकल्याण शिविर के पहले दिन 46 आवेदन प्राप्त हुए। शुजालपुर में शिविर का आयोजन 13 और 14 जून को भी जारी रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोता, स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। आज सबसे पहले बात करते हैं एल्बिनिज्म की, यानी रंगहीनता की। ये एक अनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर मेलेनिन नामक पिगमेंट का बहुत कम या बिल्कुल उत्पादन नहीं कर पाता है। मेलेनिन ही त्वचा, बालों और आंखों को उनका प्राकृतिक रंग देता है। अब इसके लक्षण और प्रभाव की बात करें तो रंगहीनता से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा बहुत हल्की या सफ़ेद होती है, उनके बाल सफ़ेद या हल्के सुनहरे होते हैं, आँखों की पुतलियाँ उसमें भी रंग की कमी के कारण नीली आँखें, ग्रे या हल्की गुलाबी दिखाई दे सकती है। इससे कमज़ोर दृष्टि और धूप के प्रति संवेदनशीलता जैसी समस्याएँ होती हैं। मेलेनिन त्वचा को धूप से बचाता है। इसकी कमी के कारण एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को

धूप से त्वचा के नुकसान और कैंसर का खतरा बना रहता है। कमज़ोर दृष्टि और धूप के प्रति संवेदनशीलता जैसी समस्याएं होती हैं। इसकी कमी के कारण एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को धूप से त्वचा के नुकसान और कैंसर का खतरा अधिक होता है। एल्बिनिज्म का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये जीन्स में बदलाव के कारण होती है। हालांकि इसके लक्षणों का प्रबंधन किया जा सकता है। धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग और सुरक्षात्मक कपड़े पहनना, आँखों की सुरक्षा के लिए यूवी प्रोटेक्टेड धूप का चश्मा लगाना, दृष्टि सुधार के लिए विशेषज्ञ की मदद लेना, ये मोटी मोटी बातें हैं जो एल्बिनिज्म की हमने बताई आपको, रंगहीनता की। और अब सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म पुकार का ये गीत सुना आरडी बर्मन की आवाज़ में। गीत लिखा था गुलशन बावरा ने, संगीत आरडी बर्मन का था और फिल्म पुकार। श्रोताओं, बात करते हैं जीवन की। जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कठिनाइयाँ, बाधाएँ, असफलताएँ या अप्रिय घटनाएँ ना आई हों, किंतु मनुष्य की महानता इस बात में नहीं है कि उसके जीवन में कितनी समस्याएँ आई, बल्कि इस बात में है कि उसने उन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार किया। जो व्यक्ति बीती हुई घटनाओं के बोझ को अपने मन में ढोता रहता है, वो वर्तमान की संभावनाओं और भविष्य के अवसरों को खो देता है। अतीत से सीख लेना बुद्धिमानी है, लेकिन उसमें उलझे रहना आत्म विकास की सबसे बड़ी बाधा है। बीती हुई घटनाएं बदली नहीं जा सकती, इसलिए उनके बारे में निरंतर चिंतन केवल दुख, निराशा और मानसिक अशांति को जन्म देता है। जो व्यक्ति हर समय अपने साथ हुए अन्याय, असफलता या दुख को याद करता रहता है, उसका मन नकारात्मकता से भर जाता है और उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है। इसके विपरीत सफल और पुरुषार्थी व्यक्ति भविष्य की ओर दृष्टि रखता है। वो जानता है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। उसकी सोच में नई संभावनाओं, नए प्रयासों और नए निर्माण की ओर केंद्रित रहती है। वो भाग्य को दोष देने के बजाय कर्म को महत्व देता है और अपने परिश्रम से परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है। संघर्ष उसके लिए बाधा नहीं बल्कि विकास का माध्यम बन जाता है। वर्तमान क्षण ही जीवन का वास्तविक सत्य है, अतीत स्मृति है और भविष्य संभावना, जबकि कर्म करने का अवसर केवल वर्तमान में उपलब्ध है। इसलिए विवेकपूर्ण जीवन वही है जो बीती बातों से शिक्षा लेकर उन्हें वहीं छोड़ दे और नई आशा, नए संकल्प तथा सकारात्मक चिंतन के साथ आगे बढ़े। जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ, आत्मविश्वास और सतत प्रयास के बल पर आगे की राह बनाता है, वही जीवन की मंजिल प्राप्त करता है। उसके जीवन में प्रश्न चिन्ह नहीं बल्कि उपलब्धियों, संतोष और सफलता का उज्ज्वल प्रकाश होता है।

किसी के ना आई, हाथ किसी के ना आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा।

श्रोताओं भी अपने एस डी बर्मन के इस आवाज़ में शैलेंद्र गाली का ये गीत सुना, फिल्म थी गाइड।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अब हम बात करते हैं विचारों की। व्यक्तित्व का आधार है विचार। मनुष्य का जीवन परिस्थितियों से कम और उसके विचारों से अधिक निर्मित होता है। विचार केवल मानसिक तरंगे नहीं, बल्कि चेतना की ऊर्जा, व्यक्तित्व की दिशा और नियति का आधार भी है। जिस प्रकार बीज में विशाल वृक्ष बनने की संभावना छिपी होती है, उसी प्रकार विचारों में जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने अथवा पतन की ओर ढकेलने की शक्ति निहित होती है।

विचार ही मन और आत्मा के बीच सेतु का कार्य करते हैं तथा हमारे भाव व्यवहार चरित्र को आकार देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य मूलतः प्रकाश, पवित्रता और दिव्यता का स्रोत है, किंतु जब उसके विचार नकारात्मकता, भय, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ से भर जाते हैं तब उसकी अंतर्निहित ऊर्जा क्षीण होने लगती है। जबकि प्रेम, करुणा, मैत्री, कृतज्ञता और आत्मविश्वास जैसे सकारात्मक विचार नई चेतना का संचार करते हैं। यही विचार मनुष्य की जीवनी शक्ति को जागृत कर उसे संघर्षों के बीच भी प्रसन्न और संतुलित बनाए रखते हैं। यही कारण है कि हमारे मनीषियों ने सदैव विचार शुद्धि को आत्मविकास का प्रथम सोपान माना है। शुभ संकल्प विचारों को दिशा देने का प्रभावी माध्यम है। जब व्यक्ति ये संकल्प करता है कि वह अपने भीतर प्रेम, सहिष्णुता, क्षमा और सद्भाव को विकसित करेगा तब उसके जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। संकल्प की शक्ति व्यक्ति को दुर्बलता से सामर्थ्य, निराशा से आशा और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने विचार जगत को आध्यात्मिक मूल्यों से संपन्न करें। ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग और आत्मचिंतन के माध्यम से विचारों को परिष्कृत बनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि विचार ही ऊर्जा है, विचार ही व्यक्तित्व है। जिस दिन मनुष्य अपने विचारों को उज्ज्वल बना लेता है उसी दिन उसके भीतर सन्निहित दिव्यता का सूर्य उदित हो जाता है।

अभी आपने मन्ना डे का गाया ये गीत सुना। फिल्म थी सफर। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। तो अब आपको सुनवा रहे हैं ए आर रहमान, कैलाश खेर, मुर्तजा कादिर की आवाज में ये गीत। फिल्म है मंगल पांडे, बोल जावेद अख्तर के हैं, तर्ज बनाई है ए आर रहमान ने।

ये गीत आपने सुना फिल्म मंगल पांडे से, गायक थे A.R. रहमान, कैलाश खेर, मुर्तजा और कादिर। अब सुनिए लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज़ में संतोष आनंद का लिखा गीत। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म है क्रांति।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म क्रांति का ये गीत सुना। गीतकार थे संतोष आनंद, आवाज़ लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, नितिन मुकेश और साथियों की थी। फिल्म क्रांति के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर अब समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर, मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात, हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती

0: क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्रीय कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
5: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,00,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें

0: कृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुँचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया? इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खियां।

0: ही बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द। तेहरान ने कहा, अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा। हम जानते हैं खेल क्या है। यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with US Secretary of State Marco Rubio over US strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
3: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. Thereafter, the two leaders will proceed to the historic Villa Kerglos for the bilateral summit, where defense, space, civil nuclear energy, technology and people-to-people ties are expected to feature prominently on the agenda. India and France share over 25 years of strategic partnership with deep cooperation in defense, space and a fast-growing economic relationship with bilateral trade crossing $15.82 billion in 2025-26. Shailesh Menon for Akashwani News, Nice, France.
2: after concluding his

मीडिया वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सवेरा। ये कार्यक्रम फिल्म संगीत पर आधारित होता है और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। आज हम बात करेंगे साथ की। जी हाँ, साथ की, जो साथ हमेशा एक दूसरे के साथ होता है और वही साथ जो हमें एहसास दिलाता है कि सफर को आसान बना लेता है। जिंदगी एक लंबा सफर है और इस सफर को आसान बनाने वाली सबसे बड़ी नेमत है किसी का साथ होना। इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे किसी न किसी पल किसी साथ की जरूरत जरूर होती है। साथ का मतलब सिर्फ किसी के पास होना नहीं, बल्कि हर खुशी और हर गम में एक दूसरे के हाथ में हाथ रखना, यानी कि साथ रहना है।

जब कोई साथ निभाता है तो मुश्किल हालात भी आसान लगने लगते हैं। अच्छे वक्त में तो लोग साथ दिखाई देते हैं, लेकिन असली साथी वही होता है जो बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़ा रहे, जो हमारी कामयाबी पर दिल से खुश हो और हमारी नाकामयाबी में हौसला बढ़ाए। वही सच्चा हमसफर कहलाता है।

0: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
1: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सबके बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
2: जब साथ की बात होती है तो साथ निभाना एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी ऐसी कि जिसको कहा जाता है कि जन्म जन्म का रिश्ता। जब साथ की बात होती है तो कुछ वादे होते हैं, कुछ एहसास होता है, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो दिल से एक खिंचाव पैदा करती हैं, एक अट्रैक्शन पैदा करती हैं कि साथ कहां तक निभाना है, जिंदगी भर या कुछ क्षण तक।

साथी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि भरोसे और मोहब्बत और अपने पन का नाम है। एक अच्छा साथी हमेशा खामोशी को भी समझ लेता है और उसकी मौजूदगी दिल को सुकून देती है और यह एहसास दिलाती है कि हम तन्हा नहीं हैं। कई बार कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं बल्कि एहसासों से चलते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है।

साथ चलना सिर्फ एक ही रास्ते पर चलना नहीं, बल्कि एक दूसरे के ख्वाबों को, जज्बातों को, संघर्षों को समझना भी है। रास्ते में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर रिश्ते में इज्जत और भरोसा बना रहे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। साथ चलने वाले लोग सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचते या पहुंचाते, बल्कि सफर को यादगार भी बना देते हैं। एक शायर ने क्या खूब खूबसूरत बात कही है, सफर लंबा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, सफर लंबा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई अपना साथ चलने वाला हो।

इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन आज देहरादून में भारतीय सेना अकादमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। ये परेड इस बार ऐतिहासिक होगी क्योंकि पहली बार लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी परेड में शामिल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। इसमें 120 भारतीय इनोवेटर्स, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इस दौरान 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और आखिरी दिन है। आज ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बैठक में सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी द्वितीय अवसर परीक्षा के परिणाम में बेटियों ने बाजी मारी है। परीक्षा में शामिल 1,42,000 से अधिक परीक्षार्थियों में से 84,871 विद्यार्थी सफल हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल के दौरे पर हैं। यहां उनका विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। श्री प्रधान कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया। भारत का पहला मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियावेब डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत पर आधारित सुरमई सवेरा और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जावेद खान।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। कलाकार हैं शोभित सिंह धुर्वे। आइए सुनते हैं इनके गाए आदिवासी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शोभित सिंह धुर्वे और साथियों के गाए आदिवासी लोकगीत। अब सुनिए राम प्रसाद सयाम का गाया लोकगीत।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। फनकार हैं गुलाम अली। आइए सुनते हैं इनकी गई चंद गज़लें।

पहाड़ी रागनी जिस इलाके की है उस इलाके में कैसे वो गाते हैं, उनका स्टाइल ये है, बांसुरियों में वैसे

अब सुनिए गुलाम अली की गई ये गजल।

कार्यक्रम के आखिर में पेश खिदमत है निज़ामुद्दीन निज़ाम का ये गज़ल, गायक है गुलाम अली।

सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख विनीत महेश्वरी, वाचन स्वर दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के ग्राम रमासिया से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध बनेगा। उन्होंने किसानों से अंधाधुंध रासायनिक खाद का उपयोग न करने और मिट्टी की जाँच के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की है। यह अभियान 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायसेन जिले में कृषि के क्षेत्र में एक और अहम पहल की गई। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिले की कृषि रोडमैप को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि उद्यानिकी पशुपालन और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कलेक्टर ने टाइम लिमिट बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व प्रकरणों, सीमांकन, नामांतरण और लोक सेवा गारंटी के आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की फार्मर रजिस्ट्री 100% पूरी करने और ई विकास टोकन प्रणाली की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी रायसेन में बड़ा कदम उठाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग ने ग्राम सुरई से लगे वन क्षेत्र में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। करीब 35 हेक्टेयर अतिक्रमण मुक्त भूमि पर 35,000 पौधे रोपे जा रहे हैं, जिनमें सागौन और मिश्रित प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। रायसेन के ऐतिहासिक किले की पहाड़ी पर इन दिनों बाघ का विचरण देखा जा रहा है। वन विभाग ने आम नागरिकों और मीडिया कर्मियों से किला पहाड़ी के आसपास न जाने की अपील की है। वन विभाग की टीम बाघ की लगातार निगरानी कर रही है। मानव वन्य प्राणी टकराव से बचाव के लिए सतर्क हैं। उप मंडलाधिकारी ने बताया कि वन्य प्राणी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप वन्य प्राणी अधिनियम का उल्लंघन है। मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण को लेकर भी जिले में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक अभय वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर नगरीय निकायों और पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। स्वास्थ्य के मोर्चे पर रायसेन जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान

अभियान चलाया जाएगा। जिले में 0 से 5 साल तक के 1,84,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय ने स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। रायसेन जिले के सभी नगरीय निकायों में जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। कलेक्टर

0: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में प्रवेश ले सकते हैं। दूसरी तरफ जिले में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवक युवतियों को सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है। माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रायसेन में 45 दिवसीय ये प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। जिले में 1 जून को रेडक्रॉस समिति द्वारा सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर शिविर लगाकर गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवाएं वितरित की गयी। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत जिला रायसेन द्वारा सिलवानी में साइक्लोथॉन और जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं ने साइकिल रैली में उत्साहपूर्वक भाग लेकर फिटनेस और हरित पर्यावरण का संदेश दिया। रायसेन जिले के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द ही खास ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की इस पहल का मकसद है कि शिक्षक और कर्मचारी ये समझ सके कि यदि कोई विद्यार्थी मानसिक तनाव या अवसाद से गुजर रहा हो तो उसे समय पर पहचान कर मदद की जा सके। ये ट्रेनिंग 6 जुलाई को सरकारी कॉलेजों के लिए, 7 जुलाई को प्राइवेट कॉलेजों के लिए और 8 जुलाई को विश्वविद्यालयों के लिए ऑनलाइन आयोजित होगी। रायसेन जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे रायसेन जिले की चिट्ठी, आलेख विनीत महेश्वरी का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। मीडिया वेव डीटीएच का ऑडियो चैनल साथी न्यूज़ ऑन एआई।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:05 हुए, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की 150वीं।

श्रोताओ, गौरव गान की डेढ़ सदी का तात्पर्य राष्ट्र के प्रति समर्पण, संस्कृति और स्वाभिमान की उस 150 साल की पुरानी गौरवशाली यात्रा से है जो स्वतंत्रता संग्राम की चेतना के रूप में प्रज्वलित हुई थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना और उसके उद्घोष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्राण फूके थे। ये मात्र गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता का मंत्र, त्याग, तपस्या और जन जन को जोड़ने वाली ऊर्जा का प्रतीक था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 के दशक में रचित ये गीत 1882 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। प्रथम गायन 1896 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार स्वर दिया। 1905 के बंगाल विभाजन के समय ये गीत जन आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार बन गया। वंदे मातरम का अर्थ है बांग्ला मिश्रित। इस अमर गीत का अर्थ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं माता। इस गीत ने पहली बार देशवासियों को भौगोलिक सीमाओं से निकालकर भारत माता मातृभूमि की साक्षात छवि के प्रति समर्पित किया। इस उद्घोष ने क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने की अदम्य शक्ति और साहस प्रदान किया। आज स्वतंत्रता के इतने दशक बाद भी ये गीत भारत की सांस्कृतिक धरोहर और एकता का मूल मंत्र है। इसके 150 वर्ष, डेढ़ सदी पूरी होने का उत्सव हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, त्याग और संस्कृति की ये विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल है। इसे अक्सर आधिकारिक और सांस्कृतिक आयोजनों में राष्ट्रगान के समानांतर सम्मान और प्रेम के साथ गाया जाता है।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:10 होने वाले हैं। विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खाड़ी में भारतीय तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। ईरान के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के तहत अमरीका ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहमत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $16 अरब हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
3: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से किस

0: सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लियाकी फ्रीडम जहाज में भारतीय नाविकों के जान गंवाने की खबरें फर्जी हैं। मंत्रालय ने बताया कि जहाज के कप्तान से इस बारे में संपर्क किया गया है और कप्तान ने बताया है कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने लोगों से ऐसे फर्जी दावों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान को समृद्ध परमाणु सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को भी नष्ट करना होगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने ये बात कही। श्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों ने यूरोप को मध्य पूर्व से तेल खरीदने के लिए मजबूर किया, जिससे भारत को अन्य किफ़ायती विकल्प तलाशने पड़े। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी ने किया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। श्री सिंह ने कहा कि इस दृष्टिकोण में मध्य एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच की मेजबानी करेगा। दक्षिण कोरिया में सियोल अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने का दोषी पाया। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हरा दिया है। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया है। बर्मिंघम के एडबेस्टन में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 219 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 132 रन पर ही सिमट गई। भारत का पहला मुकाबला रविवार को पाकिस्तान से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खाड़ी में भारतीय तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। ईरान के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के तहत अमरीका ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहमत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा गीतों को लेकर और आपके खत के साथ।

पहले सुनिए किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। संगीतकार हैं आरडी बर्मन, फिल्म है रॉकी। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता, जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बंडा वेलई से लक्ष्मण रेखवार, विनीता रेखवार, वैशाली वैष्णवी, दीपेश लल्लू हल्ले और इनके परिवार के सदस्य, बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारीलाल बढ़ई, शेख मुनीर, ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, संजय पुरी, सर्रई केवलारी से कमला प्रसाद शर्मा और उनके परिवार के सदस्य, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन।

आप सुनिए फिल्म लीडर का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद, सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना प्राची नेमा, ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य, यंग रेडियो लिसनर्स जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन और सत्येंद्र जैन।

0: से कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ।
1: अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म है बरसात। इस गीत को सुनने के लिए हमें ख़त भेजा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र, ब्रजकांत सारथी। जौनपुर पोस्ट लपरी ग्राम मुड़ेला से चंदा कुमारी, चांदनी, आकाश, कन्हैयालाल, रीता देवी। बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, दिगंबर गदरे, राजेश गदरे, शिवम, शुभांग, सृष्टि, विवेक, वंदना और लव कुश।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है, फिल्म का नाम फर्ज। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका वर्मा, किशोर कुमार, दीपक झावेंद्र वर्मा, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया, पुणे से पंकज आर्या, जरूर वरुण से बाबा साहब वाडोदे और चंद्र प्रभा वाडोदे।

नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने और पसंद किया है आप सबने। नेपाल पहले से सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बर्गी नगर से रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर गदरे, राजेश गदरे, शिवम इनके परिवार के सदस्य, अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शुएब मुस्ताबा, रऊफ शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी को सुनिए, फिल्म है बहू बेगम। सुनना चाहते हैं इस गीत के लिए पत्र भेजा है राजपुर से, घिस्सु दिलवारे लक्ष्मी माधुरी सोनाली भगवान पुष्पा नेहा एकता स्मिता सौरभ कुणाल दिलवारे जतुका किशनपुर से आलम दिलकश शबाना नाज रिजवान राही इमरान राजा आलम शेख शबाना आलम चांदनी नाज गणेशपुर से हिना कैसर मोहम्मद वकील राही फिरोज आलम कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका वंश बत्ता छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए फिल्म आरजू का ये नगमा। इस गीत को सुनना चाहा है कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी मीनू राज श्रीमाली, उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं अभिजीत गवाणकर, राही सरिता, सिद्धांत प्रिंस, एकांश गवाणकर, नागपुर बहादुरा से शैलेश वैशाली, श्वेता, सुमित, ध्वनि, नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी लक्की रोली, श्वेता और परू।

अब सुनिए, मोहम्मद रफी को फिल्म है नीलकमल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। सुनना चाहते हैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति, ज्योति, सीमा और उनके परिवार के सदस्य। खरगोन से ध्रुवा सोनावड़े, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम कृष्णा, शुभम सोनावड़े। प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष मंदा, संदीप माधुरी, पिंटू जयश्री खंडाले।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सारंग अब समाप्त होता है। 10:58 हुए हैं। अब न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले कर रहे हैं।
1: भोपाल का प्रसारण लीजिए, अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल के दौरे पर हैं। श्री प्रधान दोपहर 1:30 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित करेंगे। वहीं शाम 5 बजे से वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। 19वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 सोमवार से शुरू

0: होगा। एक सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान मुंबई के एनएफटीसी कॉम्प्लेक्स स्थित उषा प्रवीण गांधी कॉलेज हॉल में वृत्तचित्र, लघु फिल्में और एनिमेशन सिनेमा का प्रदर्शन होगा और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच इस महीने की 17 तारीख को लखनऊ में और तीसरा तथा अंतिम मैच 20 तारीख को चेन्नई में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण, थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे।
2: श्रोताओं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में। मैं हूं आज आपके साथ आकांक्षा, तो आज दिल की बात जरा खुलकर होगी मेरे साथ। श्रोताओं हम पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं, कभी मम्मी पापा की उम्मीदें, कभी बॉस की डांट को संभालना, तो कभी अपने जीवन साथी या दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान लाना। पर इन सब के बीच एक इंसान कहीं पीछे छूट जाता है, जानते हैं वो कौन है? वो हैं हम खुद। अक्सर जब हम अपने लिए वक्त निकालते हैं या खुशी की बात करते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है, कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही? तो आज हमारे इस फोन इन प्रोग्राम का सीधा सा सवाल ये है कि क्या आप अपने आप को खुश रखते हैं? क्या आपका खुश रहना जरूरी है? क्या आप भी अपनी खुशियों को दूसरों के चक्कर में पोस्टपोन करते आए हैं? तो उठाइए फोन और लगाइए नंबर। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो आपके कॉल्स का हमें है इंतजार। हेलो नमस्कार।
3: हाँ नमस्कार, फोन करे गीत सुने?
2: जी नहीं, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
3: जी नमस्ते
2: जी, तो अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं आप?
3: हाँ जी, मैं ग्राम कन्या विकासखंड बिरसा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से ध्रुवाराम साहू बात कर रहा हूँ।
2: साहू जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
3: बहुत अच्छे हैं, बस खेती किसानी काम कर रहे थे।
2: अच्छा,
3: सोचे आज कार्यक्रम में कॉल कर लिया जाए करके, लग भी गया कॉल।
2: साहू जी आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कितना जरूरी है अपने आप को खुश रखना, तो आप बताइए आप अपने आप को खुश रखते हैं?
3: बिल्कुल, रखने के लिए सबसे ज्यादा तो ये है कि जितनी हमारी जो इच्छा है ज्यादा ये नहीं करते अपन, ज्यादा इच्छा नहीं रखते, क्योंकि इच्छा दुख का कारण होता है और जितना हो सके व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं
2: जी।
3: और क्या है, खाली पीली रहोगे तो क्या तनाव उत्पन्न होता है
2: जी।
3: तो खुश करने के लिए क्या है, जो प्राकृतिक दिनचर्या है
2: जी,
3: उसके हिसाब से जीने का प्रयास करते हैं। जैसे सुबह प्रातः काल उठ जाना, अपने जो दैनिक काम है उसमें लगना, बस और सब सबके साथ मिलजुल कर रहना, यही है अपना खुश रहने का मूल मंत्र।
2: वो तो बहुत सही बात कही आपने, लेकिन आपने कहा कि आप ज्यादा इच्छाएं नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों? जब तक हम इच्छा नहीं,
3: मैडम जी कभी कभी क्या है, इच्छा रखोगे और इच्छा पूरा ना हो
2: जी
3: तो दुख होता है, और जब दुख होता है, गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने के लिए हम दूसरे गलती करते हैं तो सजा अपने आप को देते हैं, और दुख का कारण यही होता है।
2: हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुख तकलीफ तो होती है, लेकिन इच्छाएं रखेंगे तभी तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा तो जरूरी है, और इच्छा ऐसा है कभी पूरी होने वाला ही नहीं है।
2: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अब देखिए सुनिए ना,
3: अनंत होती है होने के लिए, एक इच्छा जिसकी पूरी होती है दूसरी इच्छा अपने आप जन्म ले लेती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ बात हो रही है अपने आप को खुश रखने की इच्छा की। हाँ, कि अब कई बार हम जैसे अपनी पसंद की फिल्म देखने के लिए मान लीजिए बैठ जाते हैं, और बस थोड़ी देर चुपचाप बैठना है, चाय पीना है, और खुशी तो हमें मिलती है ना कि हाँ हम अपने पसंद का काम कर रहे हैं, सारी चिंताओं से दूर होके हम अपनी पसंद का काम करेंगे तो हम तो खुश होंगे, है ना? तो इसीलिए ये भी तो हमारी एक इच्छा है। मान लीजिए आज आप सोच रहे हैं आज मुझे मूवी देखना है, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है, लेकिन आप वो सोचा तो आपने, इच्छा तो की कि मुझे देखना है, तो एक ना एक दिन आप अपने लिए समय निकाल लेंगे।
3: हाँ,
2: है ना। तो देखिए छोटी छोटी सी

0: खुशियां हैं।
1: बहुत जरूरी है
0: जी।
1: खुश रखने के लिए क्या है, भाग दौड़ के साथ साथ कुछ छोटी मोटी जो खुशियां हैं
0: बिल्कुल
1: उसको अपने आसपास सहज कर ही रखना चाहिए
0: जी। तक आप
1: कमाने के लिए इतने भागते हैं
0: जी,
1: और धन धन कहते हुए इंसान कब निधन हो जाता है पता ही नहीं चलता है
0: जी।
1: इसलिए छोटी छोटी

0: हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, उनको देख के हमें भी बहुत खुशी होती है।
1: हाँ सही बात है, उनकी खुशी में हमारी खुशी होती है।
0: जी बिल्कुल
1: और खुशी को क्या है, मिलजुल के बांटने का ही काम है।
0: बिल्कुल, तो जब आप खुश रहेंगे तभी तो आप खुशियाँ बांटेंगे, आप तकलीफ
1: बिल्कुल
0: में होंगे तो
1: बिल्कुल
0: आप किसी को खुशी नहीं दे पाएंगे,
1: सही बात, सही बात है
0: है ना। तो इसीलिए जीवन मिला है, सुख दुख लगा रहता है साहू जी, लेकिन
1: बिल्कुल
0: उसमें
1: बिल्कुल
0: ही कुछ समय हमें अपने लिए निकालना है, अपनी खुशी के लिए निकालना है, जिसमें आपको सुकून मिले, आप खुश रहें, ऐसा काम भी कीजिएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: जी नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। किनसे हमारी बात हो रही है, अपना परिचय दीजिए।
1: राम नरेश बोल रहा हूँ मैं, कटारिया खीरी जिला राजगढ़ से।
0: नरेश जी,
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: हम ठीक हैं।
0: ठीक हैं। आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है अपने आप को खुश रखना। और क्या आप अपने आप को खुश रखते हैं?
1: खुश रखने की कोशिश तो हर एक मनुष्य करता है।
0: जी,
1: वह प्रसन्न रहे, और प्रसन्नता तभी आएगी यदि वो स्वास्थ्य उसका ठीक है,
0: बिल्कुल,
1: या धन की दृष्टि से वो सक्षम है, या फिर अपने काम से वो प्रसन्न है जो काम वो करता है।
0: जी,
1: भले वो कृषि का करता हो या कोई भी किसी प्रशासनिक सेवा में काम करता हो, अगर उन सब क्षेत्रों से वो खुश है तो खुश है, प्रसन्न है।
0: बिल्कुल।
1: और खुश रखने के लिए बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पसंद का खाना खाते हैं।
0: जी,
1: बहुत सारे लोग किसी की सेवा करने में प्रसन्नता रखते हैं।
0: जी,
1: बहुत सारे लोग जो है ऊपर जाते हैं, घूमने जाते हैं, बहुत सारे हिल स्टेशन पे जाते हैं, पर्यटक स्थल होते हैं, वहाँ जाते हैं ताकि उन्हें खुशी मिले, वह प्रसन्न हो।
0: जी,
1: या दूसरे की सहायता करने में वो अपना प्रसन्नता खुशी देखते हैं, प्रसन्नता देखते हैं।
0: आप किस में खुशी देखते हैं अपनी? आपको किस बात से खुशी होती है, किस काम से खुशी होती है? अपने आप को खुश रखने के लिए आप क्या करते हैं?
1: हम अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ा म्यूजिक सुन लेते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: संगीत सुन लेते हैं।
0: जी,
1: हमारे जो विद्वान हैं जो, और जो वो ये कहते हैं कि म्यूजिक थेरेपी।
0: बिल्कुल है ही, म्यूजिक बहुत अच्छी थेरेपी है आपको मानसिक शांति पहुंचाने के लिए। सुकून मिलता है उसको जब हम सुनते हैं तो।
1: ये संगीत है, जैसे बहुत सारे लोग जैसे काम का बोझ होता है उनके ऊपर, तो वो क्या करते हैं कि अपनी पसंद का कोई सीरियल देखते हैं।
0: जी,
1: या कोई फिल्म देखते हैं।
0: जी,
1: या फिर कोई गीत सुनते हैं अपनी पसंद के सिंगर का।
0: जी, देखिए खुश रहने का सबसे बड़ा फायदा तो हमारा यही है कि जब हम खुश रहते हैं तो हम तनाव फ्री हो जाते हैं।
1: जी,
0: है ना, इससे हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो जाते हैं हम।
1: हाँ, स्वस्थ हो जाते हैं। और कई बार वो कहते हैं ना कि एक चीज से हम, जैसे कोई भी किसी भी चीज पर हम काम कर रहे हैं या किसी चीज की चिंता है, जिससे थोड़ा विराम ले लिया जाए।
0: जी,
1: थोड़ा हमें थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए और फिर से नई एनर्जी के साथ में।
0: जी,
1: और फिर उस चीज को और बारीकी से देखा जाए।
0: जी,
1: तो हम कुछ ना कुछ उसका समाधान निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है। क्योंकि जब लगातार हमारे दिमाग पर जोर पड़ता है किसी काम का, वो थोड़ा बुद्धि जो है काम करना थोड़ा कम कर देती है। तो हमें खुश होने के लिए, दोबारा से रिफ्रेश होने के लिए हमें एनर्जी आ जाए, ताकि हम उस चीज को बड़े आराम से उस चीज को देखकर करें।
0: और ये छोटी छोटी सी चीजें ही, हमारी हॉबी, म्यूजिक या वॉक करना भी, ये हमें तुरंत खुशी दे देते हैं।
1: या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई परिजन है।
0: जी,
1: या हमारी कोई बहन है, बेटी है, मित्र है, दोस्त है, हम उससे बातचीत करने से प्रसन्नता महसूस करते हैं, तो 2 मिनट उनसे बातें करें।
0: जी, आपको बात बताना बोलना चाहूंगी नरेश जी कि जब, जैसे अभी आपने परिवार या कोई साथी की बात की कि उनसे हम बात कर सकते हैं, तो इससे हमारे रिश्तों में भी मजबूती बनती है, है ना। कोई भी हमारे परिवार का सदस्य, अगर हम उससे खुलकर बात करते हैं तो हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं, हमें खुशी तो मिलती ही है। तो एक पंथ दो काज वाली ये बात हो जाती है।
1: लेकिन आज के जमाने में, जिस आधुनिक युग में,
0: जी,
1: लोग इस तरह का काम बहुत ही कम कर पाते हैं। तो काम में इतनी व्यस्तता होती है, या फिर कई बार फोन

0: लगाना या संपर्क करना अपने दूर के रिश्तेदारों से, तो वो कोई काम होता है तभी इस चीज के लिए संपर्क किया जाता है, ये देखा गया है
1: जी। ये तो व्यस्तताएं बढ़ गई हैं ना, तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें खुद भी आगे बढ़ना होगा। हमारे चाहने वाले या हमारे परिवार के सदस्य या कोई भी दोस्त है, अगर वो हमें नहीं कर पा रहा तो हमें इनिशिएटिव लेना होगा, हमें बात करनी होगी। और एक
0: जी।
1: बार अगर ये सिलसिला हम चालू कर देंगे तो आप देखिएगा दोबारा उनका कॉल, उनसे बात हमारी ज़रूर होगी।
0: और एक बात आपने खुशी की बात कही, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा मित्र या दोस्त हमसे नाराज है
1: जी,
0: और यदि उसका पसंद का कोई हम चीज ले जा सकते हैं, चाहे मिठाई हो सकती है चाहे कुछ खाने की चीज हो सकती है, यदि वो नाराज है और वो चीज उसको दी जाए और बड़े अच्छी तरह से प्रस्तुत की जाए, हो सकता है वो उस चीज को खाकर थोड़ा नाराजगी
1: दूर हो जाएगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि अगर आप जानते हैं उनकी पसंद क्या है और आपने उनकी पसंद की चीज़ या कुछ भी आप मिलने ही चले गए, वो खुश हो जाएंगे और नाराजगी सारी एक तरफ।
0: हाँ हो जाएगी, और उस विषय हम सॉरी भी कह सकते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: सॉरी
1: बिल्कुल
0: आपका काम करेगा और वो व्यक्ति आपको माफ।
1: नरेश जी, बहुत
0: सेम
1: बढ़िया
0: बात
1: बात
0: है।
1: आपने ये कही है, हमारे सारे श्रोता सुन रहे होंगे तो वो जानेंगे कि देखिए हाँ, ये भी एक पहल है जो हमें अपनी तरफ से कर लेनी चाहिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी। बहुत अच्छी बात आपने कही है नरेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने फ़ोन किया, इतनी अच्छी बात की, उसके लिए धन्यवाद।

0: नमस्ते,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार। कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: जी आदरणीय होने के नाते आपका भी स्वागत करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किन से हमारी बात हो रही है, हम जान सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं जय नरसिंहदेव, FM रेडियो ग्रुप, ग्राम करकबेल, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर से कमलेश का हार बात कर रहा हूँ जी।
0: कमलेश जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और बहुत अच्छे श्रोता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: थोड़ी सी हंसी मैम इसलिए आ गई, मुझे आपने बोला कि बहुत अच्छे श्रोता
0: नहीं
1: हैं
0: है ही,
1: तो हो सकता है मैं हूँ।
0: हो सकता है नहीं, आप हैं। आप किसी भी बात पर बहुत अच्छे से अपने विचार रखते हैं, खुलकर बात करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है।
1: मैम जी, मैं तो ये कहूंगा कि मैं ज्यादातर फोन इसी में लगाता हूँ जिसमें विचार रख सकूँ अपने।
0: तो आज विचार रखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या अपने आप को खुश रखना जरूरी है, और आप अपने आप को कैसे खुश रखते हैं ये भी हमें बताइए।
1: देखिए मैम जी, दिशा बहुत अनुकूल है, सभी से मेरा अनुरोध है, और मैं भी अपने आप को खुश रखने के लिए सबसे पहले तो रेडियो सुनता हूँ, और ग्राहक बंधु जो

0: आते दुकान पर मेरी, मेरी चाय नाश्ते की दुकान है, तो उनके माध्यम से खुश हो लेता हूँ। रेडियो सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं।
1: बढ़िया,
0: एक माध्यम होता है मैम ये खुश कहीं ना कहीं अपने आप को रखने का। तो मेरा आग्रह सभी से, सभी श्रोताओं से है कि अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ऐसा काम करते रहिए जिसमें कि आप खुश रहें और आपको देख कर दूसरे भी खुश हो जाए। जैसे एक उदाहरण दूंगा मैम जी, मैं
1: जी बताइए,
0: यदि नन्ना सा बच्चा होता है, यदि मुस्कुराता है वो दूर से, तो आपको जरूर मुस्कुराहट आएगी और आप भी हंसेंगे थोड़ा बहुत।
1: बिल्कुल, आपकी बात सुन के हमें वो चित्र दिख रहा है मुस्कुराते हुए बच्चे का, और मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट ही है।
0: तो मैम जी वो नन्हे बच्चे की अपेक्षा यदि हम सामान्य व्यक्ति जो समझदार है सचमुच में
1: जी,
0: और किसी के मुस्कुराने से हो सकता है वो नाराज हो जाए, क्यों मुस्कुरा रहा है मुझे देख करके, ऐसी बात है। तो मेरी पहलू दोनों तरफ है मैम जी, नन्हे बच्चे को देखकर आप वो मुस्कुराता है, यदि आपको नहीं भी देख रहा है तो आपको मुस्कुराहट आ जाती है, आप हंसी आ जाती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति मुस्कुराता है जो समझदार है, यदि आपको देखकर मुस्कुराता है तो थोड़ा बहुत तो मैं एक कह सकते सवाल उठता कि मुझे देखकर ये क्यों
1: नहीं नहीं नहीं देखिए इसमें यही बात है ना कि सोच का फर्क पड़ता है। अगर नकारात्मक सोच होगी तो ये देखकर मुझे क्यों मुस्कुरा रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव सोच है, किसी ने आपको देख के मुस्कुराया तो सामने वाला भी आपको देख के मुस्कुराएगा।
0: और अंततः यह कहूंगा कि अधिकतर काम यदि हम मुस्कुरा कर करेंगे तो वो काम में भी आसानी होगी और सामने वाले का मन भी अच्छा रहेगा। तो बस यही कहेंगे, अपने आप को मुस्कुराने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए एक ऐसा वातावरण बनाइए जिससे कि पेड़ पौधे जीव जंतु जलवायु अग्नि आकाश सभी मुस्कुराते रहे आपको देख कर कि ये व्यक्ति आ गया, मेरा संरक्षण भी होगा और मैं इसके साथ संरक्षित भी हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, खुद की देखभाल करना, खुद को खुश रखना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी भावनाओं की इज्जत इसमें हम करते हैं। अगर हम थके होते हैं तो कभी हम आराम करते हैं, कभी कभी बेवजह ही तनाव से बचने के लिए जैसे आपने कहा हम संगीत सुनते हैं, है ना, म्यूज़िक आपका रेडियो आपके साथ रहता है, चलता रहता है। हम खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुश रखेंगे।
0: जी जी, कुछ ना कुछ वजह तो हमें खोजनी चाहिए मैम जी अपने आप को खुश रखने के लिए, चाहे रेडियो हो या अन्य बात है।
1: जी, सीधा हमारी सेहत पर इसका असर पड़ता है। अगर हम तनाव में रहते हैं तो ना हम अपने आप को खुश रखते हैं, ना परिवार को खुश रख पाते हैं।
0: जी जी जी
1: जी,
0: और ज्यादातर मैं तो यही कहूंगा, यही कोशिश रहनी चाहिए कि ज्यादातर मुस्कुराकर बात करें।
1: देखिए, अभी आपके मुस्कुराहट के साथ हंसी भी आई है, इसका मतलब आप खुश हैं, आप खुश हैं कि आपका फोन लगा, आपने हमसे बात की।
0: भले मैम जी, भले बनावटी मुस्कुराहट हो, लेकिन मुस्कुराहट होनी चाहिए ताकि आपको देख करके दूसरे भी मुस्कुराहट या खुश हो सके।
1: कमलेश जी, बनावटी मुस्कुराहट नहीं होना चाहिए, मुस्कुराइए तो दिल से मुस्कुराइए। देखिए, कहीं ना कहीं वो बनावटी मुस्कुराहट या खुशी समझ में आ जाती है कि ये देख के हमें खुश नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती ये हंस रहे हैं, खुशी दिखा रहे हैं कि मुझसे मिलके उनको अच्छा लगा।
0: आप हमें खुश रखने के लिए, सभी श्रोताओं को खुश रखने के लिए यदि थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके माध्यम से रेडियो पर आपकी भी आ जाए तो हम लोग सचमुच में खुश हो जाएंगे, भले ना दिख रही हो लेकिन मुस्कुराहट आपकी आनी चाहिए।
1: नहीं, हमारी तो आ ही गई, आपने इतनी अच्छी बातें की हैं कि सुनने वाले सभी श्रोता अभी मुस्कुरा रहे होंगे और वो खुश होंगे। तो हमें अपने को भी खुश रखना है, दूसरों की खुशी तो मायने रखती है लेकिन हमें हमारी खुशी का भी ध्यान रखना है। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम जी आपको धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग करते हैं और प्रसारित करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: कामी नारी प्यार जिम लोभी के प्रिय दाम सिम रघुनाथ निरंतर रहु प्रिय लागो मुही राम। नमस्कार बहन जी।
0: नमस्ते, स्वागत है आपका।
1: जी बहन जी, आपका नाम जानना चाहूंगा।
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ, और आप कौन बोल रहे हैं ये भी बता दीजिए।
1: ये मैं बोल रहा हूँ ग्राम बहेरी जिला बांदा चित्रकूट धाम के से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ।
0: दिनकर सिंह जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हुए
1: जी। और आपसे ये बहुत जल्दी दोबारा जो है बात होके हो रही है, तो इससे भी मुझे बहुत खुशी मिल रही है। दीदी जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको खुशी मिल रही है।
1: का तरीका जो है वो सबसे कुछ हटके है दीदी जी, जो है
0: धन्यवाद
1: का मैं विषय वस्तु जानना चाहूंगा।
0: देखिए, आपने खुशी हमें दी, और आज बात भी खुशी की ही है कि कितना जरूरी है अपने आप को खुश रखना। क्या आप अपने आप को खुश रखते हैं?
1: जी बिल्कुल, जो है प्रयास तो यही करते।

0: जब कभी किसी टेंशन में होते हैं तो कहीं बाहर घूमने जाते हैं या दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, तो अपने आप को खुश रखने के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि किसी तरह अगर हम आउट ऑफ या रॉन्ग साइड में पहुंच गए हैं और हमारा मन दुखी है किसी कारण बस, तो उसको हम फिर पुनः पटरी पे लाने के लिए कुछ जरूर नए नए तरीके खोजते हैं और उसमें सफल भी होते हैं।
1: बहुत बढ़िया, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसा करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है दिनकर जी कि हम अपनी व्यस्तताओं में इतने उलझ जाते हैं कि चाहते हुए भी हम समय नहीं निकाल पाते हैं। हम तनाव में रहते हैं, खुशी डिजर्व कर रहे हैं कि हाँ हमें खुश होना है, लेकिन हम अपनी खुशी का काम नहीं कर पा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और कभी कभी दीदी जी आदमी इतनी व्यस्तता के कारण और कभी इतना टेंडम टेंशन में होता है कि उसकी नींद तक गायब हो जाती है
1: जी।
0: और उसे पाने के लिए अगर आपको एक मैं थोड़ी कहावत बताऊंगा
1: जी, बताइए
0: कि अगर अपने साथ आ जाए, अगर अपने साथ आ जाए तो दुख हो जाता है आधा, और जीवन में अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो जीवन में नहीं आती कोई बाधा।
1: वाह क्या बात है।
0: तो इस तरह से अपने यानी अपने जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, अगर उनके पास हम जाएंगे तो हमारे सिचुएशन बताएंगे कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो आपकी जो नींद गायब हो गई है वो पुनः आपकी नींद आ जाएगी और आपके जिंदगी में खुशियों के पल फिर आ जाएंगे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही है।
0: वही दीदी जी मैं ये जो अभी यंगस्टर के पास नहीं, लेकिन जो जब व्यक्ति की उम्र ज्यादा बढ़ती है तो उसको ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है और जब वो कर नहीं पाता तो टेंशनाइज होता है और उसकी खुशियां गायब हो जाती हैं। इसलिए हंसना भी चाहिए और बीच में जाके कुछ सामाजिक कार्यक्रम में अपना हिस्सा भी बताना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। हमारा खुश रहना जानते हैं दिनकर जी कैसा है, जैसे कि जब मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो वो किसी काम की नहीं होती है, उसको हमें चार्जिंग में लगाना ही पड़ता है। वैसे ही हम भी हैं कि हमारी खुशियां भी हमारा चार्जर है, जब तक हम खुद चार्ज नहीं होंगे हम दूसरों को रोशनी या खुश कैसे रख पाएंगे, रोशनी दे ही नहीं पाएंगे उन्हें।
0: बहुत खूब दीदी जी, आपके इससे जो है जो व्यक्ति डिस्चार्ज हो गए होंगे तो जरूर डिस्चार्ज हुए होंगे, जो है जो आपने ये बात कही कि बैटरी को डिस्चार्ज के बाद रिचार्ज किया जाता है, तो वही चीज आपकी ये बात सुनकर जो जितने लोग सुनेंगे या सुन रहे होंगे वो सब जो है ये इससे रिचार्ज हो जाएंगे।
1: धन्यवाद आपका,
0: और वो ऊर्जावान भी हो जाएंगे जी। एक मैं अंत में एक जो है कहावत के साथ विदा लूंगा
1: जी,
0: जो ना कभी थकता है, ना कभी रुकता है, ना कभी झुकता है, वही हिंदुस्तानी कहलाता है, वही हिंदुस्तानी कहलाता है।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दिनकर जी, और उम्मीद है कि हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे वो भी खुश हो रहे होंगे और अपनी खुशी का अब एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे।
0: बिल्कुल, और प्रेमदास बाबा जी आपकी और मेरी बात सुन के जो है गदगद हो गए हैं दीदी जी।
1: उनको बोलिए वो भी ऐसे ही गदगद रहें और हमेशा खुश रहें
0: जी। 80 वर्ष की उम्र में वो खुशी का उनका कोई ठिकाना नहीं, और उन्हीं के साथ आपका बजाया हुए गीत हम सुन रहे हैं। नमस्कार,
1: नमस्ते नमस्ते।

0: हेलो नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं अनुभा बोल रही हूँ, दिल्ली से। जी
0: अनुभा जी, बहुत दूर से आपने हमें कॉल लगाया है।
1: हाँ, एक्चुअली मैं सुनती रहती हूँ हमेशा भोपाल आकाशवाणी से आपका प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: सुनना।
0: बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर कि आप उतने दूर से सुनती रहती हैं। अच्छा, आज हमारा विषय है कार्यक्रम में कि क्या आप अपने आप को खुश रखती हैं? आप अपने आप को खुश रखना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है?
1: खुश रहना एक्चुअली में जीवन के लिए तो बहुत जरूरी है। हम खुश रहते हैं तो हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। और सबसे जरूरी बात मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में सारे सदस्य आपसे खुश रहें, तो सबसे पहले आपको खुद खुश होना होगा, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे।
0: ये
1: तो
0: बहुत
1: खुश
0: बड़ी
1: होने
0: बात
1: के
0: आपने कही
1: लिए,
0: है।
1: हाँ जी, तो खुश होने के लिए किसी बड़े कारण का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटी छोटी चीजों में ही खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। एक अच्छे और सफल जीवन की कुंजी

0: मेरे हिसाब से तो खुश रहना ही है।
1: जी अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि जब आप देखिए टेंशन हर किसी के जीवन में आती है, थोड़ी बहुत आती ही है, तो अगर आप बहुत तनाव में होती हैं तब आप अपने आप को क्या वो खुशी दे पाती हैं जो आप डिज़र्व करती हैं?
0: एक्चुअली समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं और ये उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। मैं उस समय में बस एक चीज ये याद रखती हूँ कि जैसे अच्छा समय जल्दी गुजर जाता है, हमें पता नहीं चलता, ऐसे ये तनाव, ये बुरा समय भी जल्दी गुजर जाएगा। तो हमें उसका इतना ज्यादा टेंशन ना लेके उन समस्याओं को सुलझाने की तरफ, उस दिशा में काम करना चाहिए, अपने दिमाग को स्थिर रख के, सकारात्मक सोच के साथ।
1: बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात आपने कही है अनुभा जी। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको तुरंत खुशी देती है? कुछ ऐसा है जिसके लिए आप वक्त निकाल पाती
0: मुझे मेरे दोस्तों से बात करना बहुत पसंद है,
1: हैं?
0: और जब भी थोड़ा सा भी टेंशन या कुछ ऐसा है, या जैसे ही समय मिला वैसे ही मैं उनसे बात कर लेती हूँ तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपकी मुस्कान देख के आपके दोस्त भी खुश हो जाते होंगे कि हाँ, आज मेरी दोस्त का फ़ोन आ गया, उससे बात हो गई।
0: हाँ
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अनुभा जी। ऐसे ही सुनते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी भोपाल के साथ। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: हेलो, मैं रूपा बोल रही हूँ। मैं भोपाल से बोल रही हूँ और ये आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है कि हम अपनी भावनाएं इसमें व्यक्त कर सकते हैं।
0: आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। रूपा जी, आप अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करती हैं? आज का हमारा विषय यही है कि कितना ज़रूरी है अपने आप को खुश रखना। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: जी जी बिल्कुल, ये विषय बहुत ही अच्छा है। खुद को खुश रखना मतलब सबको खुश रखना। मैं अपने को खुश रखने के लिए मैं पेंटिंग करती हूँ, गाने सुनती हूँ, और गाने से जो भावनाएं आती है और आपके रेडियो के माध्यम से जो गाने सुनने को मिलते हैं, दिल वैसे ही खुश हो जाता है।
0: वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। आप रेडियो भी सुनती हैं, अपने शौक को भी पूरा करती हैं।
1: जितना खुश आप रहेंगे उतना ही आप सबको खुश रख पाएंगे। पहले तो अपने अंतर मन को खुश रखना जरूरी है। तो यही इच्छा हमारी है और सबकी वही होनी चाहिए कि अपने को पहले खुश करें, दूसरों को खुश करने से पहले।
0: जी देखिए, इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जब हम एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो उसमें एक सेफ्टी अनाउंसमेंट आती है कि जब फ़्लाइट में इमरजेंसी होती है तो पहले आप हमेशा अपने आप को ऑक्सीजन मास्क पहनाएं, उसके बाद दूसरों की मदद करें।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: ज़िंदगी के लिए भी यही नियम लागू है कि जब तक आप खुद मानसिक रूप से स्वस्थ और मज़बूत नहीं होंगे, आप किसी और को नहीं संभाल सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। तो मैं बोलना चाहूंगी कि अगर हमारा हंसता चेहरा कोई अगला भी देखता है, अपना हो पराया हो कोई भी हो, वो खुद भी मुस्कुराता है।
0: जी
1: बस यही भावनाओं से सबके दिलों में हम खुशी भर सके, यही जिंदगी का मूल है।
0: थैंक यू रूपा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है ये। और आपकी आवाज़ और आपकी बात सुन के लगता है कि आप भी ऐसी ही हसमुख इंसान हैं, तभी आपका चेहरा देख के लोग भी खुश हो जाते होंगे।
1: बिल्कुल, यही मेरी दिली इच्छा है कि मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहूं और सबको खुश करती चलूं।
0: ईश्वर आपकी इस इच्छा को हमेशा पूरा करे। खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए और खुशियां बांटती रहिए। आपने कार्यक्रम में फोन किया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी कल संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 120 भारतीय इनोवेटर्स, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का 5वां और आखिरी दिन है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में आज सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उनके निवास पर भेंट की। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान दोपहर 1:30 कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित करेंगे। वहीं शाम 5:00 वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कल बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 12:30 से खेला जाएगा। दूसरा मैच इस महीने की 17 तारीख को लखनऊ में और तीसरा तथा अंतिम मैच 20 तारीख को चेन्नई में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:00 को हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नदिया के पार का एक गीत। आवाजें हैं जसपाल सिंह और हेमलता चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है महादेव घाट अमलेश्वर से। लिखने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है गौतम नगर जिला नांदेड़ से। लिखने वाले हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनिए ये गीत।

0: 45 सेंटीमीटर।
1: अगले गाने को पसंद किया है शिवलो ग्रीन खजूरी कला से लिखने वाले हैं तुलसी राम पाटंकर घनश्याम जाट त्रिवेणी प्रसाद निखिल वर्मा मुकेश सोनी राहुल निकुंब परमिंदर तिवारी खालिद खान राजेश पंडित विष्णु पांडे रमेश स्वरूप और राजा और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है औरंगाबाद से लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल शीतल राजेश राजदीप राजेश और राशि राजेश इन्होंने गाना पसंद किया है फिल्म हम आवाजें हैं शोभा जोशी और मोहम्मद अजीज की अनिल बख्शी ने इस गाने को लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है सुनते
2: रहिए यदि मिट्टी परीक्षण नहीं कराएंगे तो ये पता नहीं है कि हमारे जमीन में किस पोषक तत्व की कमी है और हम उसको किस मात्रा में ना देके 20 से 30 किलोग्राम जो है खड़ी फसल में एक माह पश्चात किसान भाइयों को सलाह है कि सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो इससे

0: फसल बहुत किसान हमारे आसपास यहाँ लेते हैं, तो उसके लाभ क्या?
1: अगला गाना लिया है हमने
2: व्यस्त जीवन में सूरज
1: फिल्म
2: एक महत्वपूर्ण
1: शरीफ बदमाश से। आवाज किशोर कुमार और साथियों की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आरटी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है हिनोतिया जागीर से, लिखने वाले हैं रामदास बेलदार, रोहित मैकेनिक और राहुल ठाकुर। साथ में इस गाने को पसंद किया है अंशु छोटे उस्ताद ने और गुड्डा यादव और राजेंद्र ठाकुर, इन्होंने ये फरमाइश भेजी है हिनोतिया जागीर भोपाल से, लिखने वाले हैं। अगला पत्र जो है हमारे पास में ये है, इसी गाने के लिए जो फरमाइश आई है लिखने वाले हैं राजा रामनगर देवास से, राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, रूपा खड़ी देवास से, हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल निरंजन माली और
0: किस प्रकार करें किसान भाई, ताकि
1: जिला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालिक राम और दशरथ बागवान और लोकेंद्र वर्मा ने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी है।
2: से बात करें तो मतलब

0: के लिए ये है कि हमको पोषक तत्व
1: अगले गाने
0: की
1: लिया
0: सही
1: है हमने
0: समय
1: फिल्म
0: पर सही
1: समाज
0: मात्रा देना
1: से,
0: आवश्यक है। और मेरा ये
1: आवाजें
0: मानना है
1: लता
0: कि आज के समय
1: मंगेशकर
0: किसान भाई
1: और
0: अपने खेतों
1: साथियों की
0: की
1: हैं।
0: परीक्षण
1: मजरूह
0: मिट्टी का
1: सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा
0: आवश्यकता
1: है
0: है
1: आर डी
0: जी
1: बर्मन का
0: मिट्टी
1: संगीत है और इस गाने
0: परीक्षण
1: के लिए
0: के
1: हमारे पास में
0: उपरांत ही
1: फरमाइश आई है।
0: पोषक तत्व या खाद की
1: छत्तीसगढ़
0: मात्रा
1: भटपारा
0: सर्वाधिक होती है,
1: दतरंगी से लिखने
0: इसलिए
1: वाले
0: मिट्टी
1: हैं
0: परीक्षण नहीं
1: द्वारका
0: कराएंगे इसलिए
1: प्रसाद
0: ये पता नहीं
1: वर्मा,
0: कि
1: किशोर
0: हमारे
1: कुमार वर्मा,
0: जिस
1: दीपक
0: फसल
1: कुमार
0: पर
1: वर्मा,
0: कितनी
1: झावेंद्र
0: उर्वरकों
1: कुमार
0: को किस
1: वर्मा,
0: मात्रा में डालना चाहिए।
1: महादेव
0: मुझे
1: घाट,
0: सुबह मंडी में
1: अमलेश्वर से
0: ड्राई सुबह
1: डोमिन
0: की
1: ठाकुर, सुमन
0: 40
1: ठाकुर,
0: किलोग्राम
1: मिथिलेश ठाकुर,
0: नाइट्रोजन
1: तारणी
0: 60
1: ठाकुर,
0: किलोग्राम
1: सूरज ठाकुर,
0: फास्फोरस
1: सुजला
0: 30
1: ठाकुर,
0: किलोग्राम
1: ज्योति
0: पोटाश
1: ठाकुर,
0: इत्यादि
1: रियांश
0: किन
1: ठाकुर और
0: सदस्यों
1: उनके
0: के
1: परिवार के दूसरे
0: नाम
1: सदस्य
0: जो
1: इसी गाने को पसंद
0: अपना
1: किया है।
0: सुना दे के 20 से 25
1: नेपाल पैलेस
0: किलोग्राम जो है
1: सागर
0: सरकार
1: से
0: के
1: लिखने
0: सामने
1: वाले
0: एक
1: हैं
0: बात पोषक
1: तिलक
0: तत्व
1: राणा,
0: की
1: मीना
0: होती है
1: राणा,
0: और किसान भाई
1: मोनिका,
0: मुझे सुना रहे
1: नूपुर,
0: हैं कि
1: ऋषिका
0: सुंदर
1: और
0: मुखी
1: रॉकी।
0: खेती में स्फुर तत्व की

0: गई, जो किया सो किया, तू बचा ले बलम आज मेरा जिया। हाय रे बंगले के पीछे तेरी फेरी के नीचे, हाय रे पीछे।
1: आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कालिया का एक गीत, आवाज मोहम्मद रफी और साथियों की है। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और संगीत है आर डी बर्मन का। इस गाने को पसंद किया है उपाध्याय नगर देवास से लिखने वाले हैं मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुपरमार्केट देवास से लिखने वाले हैं प्रकाश चंद जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी और मोहसिनपुरा देवास से जमील खान, इमरान खान, फुरखान और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये।

इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजकर

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जंग लगी तलवार की 8वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे

धारू तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, शिवू अपनी बीमारी से तंग आकर भगवान से मरने की कामना करता है। नारायणी उसको ऐसा सोचने से मना करती है। अपने भूखे बच्चे को नारायणी पानी पिलाकर चुप कराने की कोशिश करती है। यशवंत आकर नारायणी से दो दिन बाद हड़ताल शुरू होने की बात बताता है। शंभू एक खाली डिब्बा लेकर मजदूरों से उसमें पैसे डालने के लिए कहता है, ताकि हड़ताल के समय भूखे बच्चों के खाने का इंतजाम किया जा सके। मजदूर शंभू का मजाक उड़ाते हैं। हड़ताल शुरू हो जाती है। बलबीर स्वामी यशवंत से और ज्यादा चंदा इकट्ठा करने के लिए कहता है। हड़ताल को एक हफ्ता बीत जाता है। नीचू और शिवू हड़ताल की भयावहता पर चर्चा करते हैं। नारायणी को ठाकुर साहब के घर कपड़े धोने का काम मिल जाता है। वो ठाकुर साहब से बच्चे के दूध के लिए 5 रुपए मांग के लाती है। शिवू और लिचू इन रुपयों से नशा करने के लिए खलासी लंगर की ओर चल पड़ते हैं।

0: अरे जल्दी जल्दी चलना। अरे देखिए जो हमारे लौटने से पहले बच्चा जाग गया तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता उसका।
1: अरे भाई शिबू, ठहरा एक पैर का अपन, भला इससे तीस कैसे चल सकता हूँ।
0: अरे कोशिश तो करना।
1: अरे शिबू अपनी ताकत भर तो चल रहा हूँ।
0: सामने देख, वो बल्लियों के पुल के पास कंपनी का अकाउंटेंट खड़ा है।
1: ये साहब तो सबसे अलग ही दिखते हैं, दूर से ही पहचान लो। माथे पर चंदन का तिलक, चोटी में फूल, सफेद चमकती हुई धोती और पैरों में कैनवस का जूता।
2: क्यों रे लीचू शिबू, ये जोड़ी कहाँ जा रही है?
3: कहीं नहीं साहब, कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहल रहे हैं।
2: टहलने जा रहे हो?
3: हाँ जी, टहलने ही तो जा रहे हैं। हाँ
2: अरे शिबू, क्या पीने जा रहे हो?
3: जी वो
2: क्यों रे लीचू, तू अभी भी पीने पिलाने से बाज नहीं आता।
3: अरे नहीं साहब।
2: अरे शराब की वजह से ही तू अपंग हुआ है, जानता है? अब इस बीमार को जिंदा मारेगा क्या? तुम्हारे पतन का कारण है ये शराब, समझते क्यों नहीं? जाओ जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम खुद जहर पीना चाहते हो ना, पियो, मरो।
4: अरे भाई मेरे पास शराब की कमी नहीं है, पर क्या तेरे पास पैसे हैं?
3: इधर देख, मेरी मुट्ठी में देख, रुपया है हमारे पास। बस जल्दी से ट्यूब की टोटी खोल दे और हम पी ले।
4: ठीक है, अच्छी बात है, ले खोल दी टोटी।
3: अरे लीजू भैया, अरे मजा आ गया लीजू भैया। अरे बहुत दिनों बाद पीने को मिली, वाह वाह वाह वाह, मजा आ गया।
5: तू तो बस यूं ही है, दो घूंट में ही तय बोल गया।
3: अरे नहीं नहीं देख, मेरे तो होश ही ठिकाने पर नहीं है। देख बात सुन, देख किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो समझ लियो कि मैं तो भैया गंगा नहा लिया।
5: चिंता मत कर शिबू, चिंता मत कर, चल
3: चल चल भैया, चल चल।
5: शिबू शिबू, इस खटिया पर लेट जा। अरे थोड़ी देर के लिए सो जा, आराम आज।
3: अरे ये क्या, इसे तो बिल्कुल होश नहीं रहा। अरे बेसुध होकर खटिया पर गिर पड़ा। शिबू शिबू शिबू,
6: देखो तो, अरे आज बीमार आदमी को क्या हो गया भैया? देखो देखो,
7: अरे देख तो सही, जिंदा भी है या मर गया?
3: शिबू,
7: अरे ये तो सिर्फ बेहोश है, अरे सांस भी चल रही है अब इसकी।
8: शिबू, ये

0: घर के सामने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? हटो, हटो, रास्ता दो मुझे।
1: नारायणी देख,
0: क्या हुआ?
1: पति की क्या हालत हो गई? देख देख,
0: क्या हुआ, क्या हुआ मेरे पति को?
2: अरे
0: इनकी हालत तो वाकई बहुत खराब है। कोई मेरी मदद करो, बचाओ, बचाओ इन्हें, कोई।
2: अरे मैंने तो हजार बार मना किया है इसे, पर ये मानता ही नहीं। ये तो साइकिल की ट्यूब तक चबा जाता, ये किसी से भी नहीं डरता। नारायणी, नारायणी तुझसे भी नहीं डरता है ये तो।
3: क्या हुआ, ये भीड़ क्यों है यहाँ पर?
4: अरे तो शिबू पीकर बेहोश पड़ा है।
3: अरे चलो भागो तुम लोग यहाँ से, यहाँ पर तमाशा हो रहा है। चलो जाओ,
0: देखो ना इन्हें क्या हो गया।
4: अरे कुछ नहीं हुआ है नारायणी, नशा उतरने पर ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: क्या बोलूं मैं, ये लिच्छू राक्षस है, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं कहती हूँ पकड़ो इसे और मारो इसे।
4: अरे अरे चुप हो जा नारायणी, चुप हो जा, सामने से सुपरवाइजर आ रहा है।
0: ये अपंग मरता भी तो नहीं है। अरे पीनी है तो खुद पी, मेरे आदमी को क्यों पिलाता है?
2: अरे
0: राक्षस, तेरे शरीर में कीड़े पड़े हैं, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी।
2: नहीं नारायण,
0: मैं कुछ नहीं सुनना चाहती।
2: नारायण मैं तो
5: सुनो, ए सुनो, इधर लिच्चू है क्या? ओ तो तू यहाँ है, मुझे मालूम था कि तू शिबू के घर ही मिलेगा। देख हड़ताल के समय भी मैंने रहम खाकर तुझे साहब की नाली साफ करने के लिए एक दिन का काम दे दिया, और तू काम पर ना आकर शराब पीने लगा है? चलो चल, उठ चल मेरे साथ।
2: चल तो रहा हूँ।
5: हाँ हाँ, नाली में से कीचड़ निकालना है, चल जल्दी कर।
2: चल रहा हूँ, चल रहा
6: नारायणी।
0: क्यों पीते हो शराब?
6: मुझे माफ कर दे नारायणी, मुझे माफ कर दे,
0: मुझे कम से कम इतना तो सोचा होता कि जिन रुपयों की आपने शराब पी वो बच्चे के दूध के पैसे थे। आपके लिए शराब जरूरी है या बच्चे का दूध?
6: देख नारायणी, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी भी तो मांगी है मैंने।
0: रहने दो, माफी तो पहले भी कई बार मांग चुके हैं आप, लेकिन उससे क्या फायदा? चार दिन बाद फिर वही ढाक के तीन बाद, आप मुझे ये बताइए कि खलासी लंगर गए क्यों आप?
6: वो लिच्चू है ना, वो
0: लिच्चू?
6: हाँ वो ही मुझे जबरदस्ती लेकर गया था, मैं तो नहीं जाना चाहता।
0: लिच्चू तुम्हें कुएं में छलांग लगाने के लिए कहेगा तो क्या लगा दोगे तुम? बोलो लगा दोगे?
6: बस कर,
0: बोलो जवाब दो।
6: बस कर नारायणी, बस कर नारायणी, तेरे सिर की कसम, मैं सच कहता हूँ, तेरे सिर की कसम, जो फिर कभी शराब पीऊं, हाँ तेरे सिर की कसम, तेरे सिर की कसम, तू मुझे माफ कर दे।
0: ठीक है, मैं आपको एक मौका और देती हूँ, अगर फिर कभी देखा या सुना तो सच मुन्ना को लेकर साई नदी की गोद में समा जाऊंगी मैं।
6: क्या?

0: वही हो रहा है जिसका मुझे पहले से डर था। इस बार भी हड़ताल राजनीति की भेंट चढ़ गई। कहने को तो लोकल लीडर शास्त्री जी ने मजदूरों की हड़ताल करवा दी, मगर हड़ताल होने के बाद एक बार भी कोई गरीब मजदूरों की सुध लेने नहीं आया। अब तक तो लोगों के घरों में किसी तरह चूल्हा जलता रहा, लेकिन अब चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाएगी। बच्चों के पेट भूख से कुल बुलाएंगे। कितना समझाया था कि अपनी आधी मजदूरी इस डिब्बे में डालो, पैसे बुरे वक्त में काम आएंगे, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं। अब तो भगवान ही मालिक है।
1: राम राम काका।
0: अरे जीते रहो भृगु, कैसे हो?
1: जिंदा हूं काका, लेकिन आप यहां क्यों बैठे हैं?

0: मैं रोज सामने वाले रोजगार दफ्तर को देखता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग यहाँ आते हैं, बेरोजगारी की भीड़ का हिस्सा बनते हैं और बिना रोजगार पाए निराश होकर वापस लौट जाते हैं।
1: काका, हड़ताली मजदूरों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।
0: हाँ बेटा,
1: खाने को दाना तक नहीं है, जंगली लता और पत्ते तक तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं, पहनने को वस्त्र भी नहीं है, शरीर ढकने के लिए कपड़े के एक टुकड़े के लिए हाहाकार कर रहे हैं, बच्चों के पेट हड्डी से चिपके जा रहे हैं। क्या हम यही दिन देखने के लिए जिंदा हैं? बोलो काका, क्या हम यही दिन देखने के लिए जिंदा हैं?
0: अरे बेटा, अभी तो और बुरे दिन देखने पड़ेंगे, मौत का तांडव होगा यहाँ पर। हम अपने प्रियजनों की लाशों को चीलों और गिद्धों को नोच नोच कर खाते हुए देखेंगे, विवश होकर अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे। बेटा,
1: इतना विभत्स दृश्य, काका काका कैसे रोका नहीं जा सकता? काका,
0: रोका जा सकता है बेटा।
1: कैसे?
0: हड़ताल खत्म हो जाए तो लोग काम पर जाएंगे, उनके पेट को अन्न नसीब होगा, तब कहीं जाकर इस प्रलय को रोका जा सकता है।
1: पर हड़ताल खत्म करना हमारे वश में तो है नहीं काका।
0: हमारे वश में तो कुछ भी नहीं है बेटा, हम मजदूर तो यूनियन के नेताओं के हाथों की कठपुतली हैं, जैसा नचाएंगे हमें नाचना पड़ेगा।

0: अरे शिबु,
1: अरे लेचू भैया, ये यूनियन के नेता कर क्या रहे हैं? हड़ताल का तो कोई फैसला ही नहीं हो रहा है।
0: अरे यशवंत कहता है कि कुछ दिन सब्र से काम ले और उसे पूरा विश्वास है कि हम अच्छे दिन देखेंगे। अरे शिबु, हम लोग परमानेंट होंगे।
1: हम लोगों की छटाई नहीं होगी, हम लोग परमानेंट होंगे। है
0: बस शिवू भैया, उसी दिन का इंतजार है। हम परमानेंट होंगे और हमें तमाम दुखों से छुटकारा मिल जाएगा।
1: हाँ लीचू, लीचू भैया, हाँ। वो तेरा लड़का जगन्नाथ दिखाई नहीं पड़ रहा।
0: अरे वो शिवू, उसे मैंने भेटा गांव भेजा है।
1: भेटा गांव?
0: हाँ।
1: मगर किस लिए?
0: वो बुआई का समय चल रहा है ना, तो शायद उसे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए।
1: अरे लीचू, इतने छोटे से बच्चे से काम कराएगा तू?
0: अब शिबू, क्या छोटा और क्या बड़ा, अरे भूख से भला कोई जीत सका है आज तक?
1: अरे हाँ, अरे लीचू, ये बात तो ठीक कहता है तू।
0: शिबू, 10-12 साल का तो हो गया है वो, 7-8 साल बाद कंपनी में काम करने लायक हो जाएगा। बस शिवू, फिर मेरी चिंता खत्म।
1: अच्छा तू एक मिनट यही रुक।
2: अरे पर तू जा कहाँ रहा है?
1: अरे वो झाड़ी देख रहा है ना, बस वहीं तक अभी आया।
2: पर बात सुन, वहां जाकर करेगा क्या तू?
0: अरे मस्ती का सामान रखा है मैंने वहां पर, मैं अभी आया।
1: क्या हमारे दिन भी कभी फिरेंगे, या फिर यूनियन के नेता झूठे सपने दिखा रहे हैं? हाँ, जुलूस तो रोज ही निकलता है, नारे भी खूब लगते हैं, पर जुलूस और नारों से फायदा भी क्या? अरे इनसे पेट थोड़ी भरता है।
0: शिवू, देख ये रही लाल परी।
1: लाल परी? अरे लीचू भैया, ये तो विलायती की बोतल लगती है।
0: हाँ, बोतल विलायती है, एकदम हमारे यूनियन नेताओं की तरह।
1: क्या मतलब?
0: अरे मतलब ये मेरे भाई कि यूनियन नेता जो कहते हैं उसे करते नहीं, और जो करते हैं उसे कहते नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि इस विलायती बोतल में देसी शराब भरी हुई है।

0: देसी शराब।
1: मगर ये बता, ये मिली कहाँ से?
2: ठाकुर साहब ने फेंकने के लिए कूड़ा कबाड़ा दिया था।
1: अच्छा,
2: उसमें ये भी थी।
3: लगता है ठाकुर साहब आजकल विलायती शराब से ऊब गए हैं।
1: अरे दिखा तो।
2: ले ले ले।
0: कमाल है, विलायती बोतल में देसी शराब है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। ठहर ठहर लीजू, मैं जरा खोल के देखता हूँ। खोलता हूँ।
0: अरे क्या खुशबू है। वाह वाह वाह, दिल करता है सारी की सारी पी जाऊं।
3: बीमार आदमी, अरे तूने नारायणी की कसम नहीं खाई थी कि तू दारू नहीं छुएगा?
0: अरे तू क्या समझता है, मैं औरत से डरने वाला आदमी हूँ।
1: ठीक है।
2: लेकिन सुन,
3: नारायणी के आने से पहले ही मैं उठकर चला जाऊंगा।
1: ठीक है, चले जाना। लेकिन बात सुन, बोतल मेरे हवाले करके तो तू इसी समय जा सकता है। जा।
3: अरे यार शिवू, जैसी तेरी घरवाली है ना, बस वैसे ही मेरी घरवाली भी थी।
2: लेकिन शिवू, आजकल तो पढ़ी लिखी मेम लोग साहबों के साथ बैठकर पीती हैं।
1: अच्छा?
2: अरे उस दिन अफसर क्लब में मैं इन्हीं दो हाथों से मेम साहबों की उल्टी साफ करके आया हूँ।
1: अच्छा,
2: जरा ठहर,
3: दो घूंट पेट में उतार लूं।
1: अरे आजा, बोतल मुझे ले, मैं भी तो चखूं इसका स्वाद। दे।
0: अरे लीचू, कमाल है भाई।
1: बात सुन, सभी मेमे एक जैसी नहीं होती लीचू।
0: अरे ठाकुर साहब की बीवी को नहीं देखा तूने?
3: देखा है। अरे वो तो हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है।
0: अरे हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है। और उस दिन ना 3 अंग्रेजी बोतलें फर्श पर पटक कर तोड़ डाली थी।
2: शिव शिव, आराम से।
3: और सुन, जब मैं कंपनी में भद्राचल विभाग में था ना, तब जगन्नाथ की माँ पेट से थी। हम दिहाड़ी वाले रात को खलासी लंगर में बैठकर मजे करते थे। जगन्नाथ की माँ बेचारी आधी रात तक सभी पर बैठकर मेरा इंतजार करती थी। शिवू, मेरा इंतजार करती थी।
0: सच्ची लीचू, बेचारी ने बहुत दुख झेले होंगे, है ना? अरे उसने अपनी जिंदगी में दुख के सिवा तो कुछ देखा ही नहीं होगा, है ना?
3: ये बात तो है। अरे शिबू, एक रात तो एकदम गजब ही हो गया।
0: क्या हुआ था?
3: अरे उस रात अपने बाल खोलकर रणचंडी का रूप धारण करके खलासी लंगर में पहुंच गए। हम लोगों के सामने कतार में रखी बोतलें उठा उठा कर पटकने लगे।
0: अच्छा?
3: अरे सारे खलासी तितर बितर हो गए। हाँ शिबू, क्या भयानक दृश्य था वो।
0: अरे तू बेचारी को बहुत बहुत सताता था, है ना? बहुत सताता था तू।
3: अरे बेचारे को पूरे जीवन सताया है मैंने। हाँ तो जन्नत में शांति से होगी वो।
0: लीचू नारो नारो लीचू लीचू, मेरे यार, मेरे दोस्त, मैं भी सारी जिंदगी नारायण को कुछ नहीं दे सका। एक मेरे दोस्त, मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है।
3: शिबू
0: लीचू,
3: शिबू
0: लीचू, मैं मरूंगा।
3: अरे तू क्या,
0: मैं मरूंगा।
3: शिबू क्या बकवास
0: कर रहा है?
3: कह रहा हूँ
0: नहीं, मुझे मार, मुंह पर जूते मार, मेरे मुंह पर जूते मार,
3: शिबू
0: नहीं तो डरा नहीं।

0: क्या बात है बलबीर स्वामी, तुमने तो कहा था कि मुख्यालय से दो तीन प्रतिनिधि भी आएंगे, कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करेंगे, हमारी मांगे मान ली जाएंगी, सभी मजदूर परमानेंट हो जाएंगे।
1: उम्मीद पर दुनिया टिकी है यशवंत, हमें भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
0: अरे कब तक, आखिर कब तक बलबीर स्वामी, कब तक हम झूठी उम्मीद पर आस लगाए बैठे रहेंगे, कब तक नंगे भूखे मजदूरों को झूठी दिलासा देते रहेंगे, अरे कब तक हम उनका विश्वास तोड़ते रहेंगे।
1: कुछ दिन और यशवंत, बस कुछ दिन और, अब और मुझे लगता है कि फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, हमारी जीत निश्चित है।
0: हर बार बार बार यही एक आश्वासन बलबीर, यही एक आश्वासन। आश्वासनों के बलबूते जंग नहीं जीती जाती बलबीर स्वामी, अब वो वक्त आ गया है जब हमें कुछ ठोस करके दिखाना होगा, वरना
1: वरना क्या, वरना क्या यशवंत।
0: बलबीर, अगर एक बार मजदूरों का विश्वास यूनियन पर से उठ गया तो जानते हो क्या होगा?
1: क्या होगा?
0: सारे मजदूर मिलकर हमें साई की बालू में जिंदा दफना देंगे, समझे तुम, साई की बालू में जिंदा दफना देंगे।
1: तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है यशवंत।
0: अभी तो सिर्फ बू आ रही है बलबीर, अगर मजदूर भड़क उठे तो हमारी और तुम्हारी हस्ती तक मिटा डालेंगे, कोई जान तक नहीं पाएगा कि यहाँ यशवंत और बलबीर स्वामी नाम का कोई यूनियन नेता हुआ करता था।
1: यशवंत, यशवंत मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, तुम किसी भी तरह से मजदूरों को काबू में रखो उन्हें।
0: लेकिन कब तक?
1: बस बस कुछ दिन और, मुख्यालय से हमारे प्रतिनिधि दो चार दिन में आते ही होंगे, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: और हमारे वो लोकल लीडर शास्त्री जी का क्या हुआ? उनका नाम लेकर बहुत डींगे मारा करते थे तुम, कहाँ है अब शास्त्री जी? अरे एक बार भी हम मजदूरों के बीच नहीं आए, वो कहाँ खो गए उनके सारे वायदे, या फिर डर के मारे किसी बिल में जा छुपे हैं।
1: देखो यशवंत, शास्त्री जी का नाम सम्मान के साथ लो।
0: बलबीर, मैं शास्त्री जी से मिलना चाहता हूँ, उनके सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ।
1: ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं से शास्त्री जी को अवगत करा दूंगा, और फिर जब वो कहेंगे उनसे तुम्हारी मुलाकात की व्यवस्था भी हो जाएगी।
0: नहीं बलबीर, मुझे उनसे आज और इसी वक्त मिलना है, तुम मेरे साथ अभी उनके पास चल रहे हो?
1: नहीं, अभी ये संभव नहीं है।
0: क्यों संभव नहीं है?
1: देखो शास्त्री जी बहुत व्यस्त नेता है, उनसे हर कोई जब चाहे नहीं मिल सकता भाई, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उनसे।
0: तो ठीक है, आज से शास्त्री जी हमारे नेता नहीं रहेंगे, मैं आज ही सब मजदूरों को खबर कर देता हूँ कि यूनियन का शास्त्री जी से कोई संबंध नहीं है, और चूंकि शास्त्री जी तुम्हारे सरपरस्त हैं, इसलिए हम तुम्हारी जगह भी यूनियन का नया अध्यक्ष चुनेंगे।
1: देखो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी हालत में तुम ऐसा नहीं कर सकते।
0: अरे कौन रोकेगा मुझे बलबीर, सारे मजदूर भाई मेरे साथ हैं।
1: ओहो, तो तुम्हारे पर निकल आए हैं।
0: नहीं बलबीर, मैं सिर्फ न्याय के साथ हूं, और न्याय मजदूरों के साथ है। मैं चलता हूं।
1: यशवंत ठहरो, तुम इस तरह नाराज होकर नहीं जा सकते, कुछ जानते भी हो इसका क्या परिणाम निकलेगा?
0: हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ।
1: क्या जानते हो?
0: यही कि यूनियन को तुम जैसे दगाबाज नेताओं से मुक्ति मिल जाएगी, यूनियन को नया अध्यक्ष मिलेगा जो मजदूरों की सच्ची रहनुमाई करेगा।
1: नहीं यशवंत नहीं, होगा ये कि हड़ताल टूट जाएगी, आंदोलन बिखर जाएगा। विश्वास करो मेरा यशवंत, मैं दगाबाज नहीं हूँ, मैं सच्चे मन से मजदूरों के साथ हूँ, उनका अपना साथी हूँ मैं।
0: मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं रहा बलबीर।
1: मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं यशवंत?
0: शास्त्री जी से इसी वक्त मिलवा कर।
1: ठीक है, चलो
0: चलो आओ।
2: तुम वही हो ना दलितों के नए नेता?
0: जी।
2: शायद मैं तुमसे पहले भी एक बार यहीं पर मिल चुका हूँ।
0: बिल्कुल ठीक पहचाना शास्त्री जी आपने, आप हम लोगों के नेता हैं, आपका जातिवाद की बात करना शोभा नहीं देता, चाहे वो दलित हो या फिर ब्राह्मण या बनिया, काम करने वाले सिर्फ मजदूर हैं, मजदूर की सिर्फ एक ही जाति होती है, श्रम करना, खून पसीना एक करके निर्माण करना।
2: क्या तू नहीं जानता, सच्चिदानंद ने अपनी किताब में लिखा है, दक्षिण में कहीं ऐसा नियम है कि निम्न जाति के लोग दलितों से 33 फुट, उच्च जाति से 66 फुट और ब्राह्मणों से 99 फुट की दूरी पर खड़े हों। अरे किसी स्थान पर सफाई कर्मचारियों द्वारा राजपूतों

0: जैसी पोशाक लेने पर मार मार कर हड्डियां तोड़ दी गई थी।
1: अरे ये सब बीती बातें हैं शास्त्री जी, आज हम आजाद मुल्क के आजाद नागरिक हैं। सरकार ने इस कानून को लागू भी करा दिया है। आज के युग में जातिगत भेदभाव के लिए सजा का प्रावधान है।
2: यशवंत ठीक कह रहा है शास्त्री जी।
0: तुम लोग किस काम से आए हो यह मैं खूब जानता हूँ। तुम लोग अब मेरी सलाह लेने आए हो, 7 दिन बीत गए।
3: अब मैं यूनियन के समझौता पत्र को यूं ही नहीं नकार सकता।
0: यही सोच रहे हो ना तुम? मैं यूनियन के समझौता पत्र को बिल्कुल नकार सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी।
1: कौन सी बात शास्त्री जी?
0: जिस समझौते की कंपनी दुहाई दे रही है वो समझौता जबरदस्ती हमसे करवाया गया है, इस बात का मैं सबूत दे सकता हूँ।
2: लेकिन शास्त्री जी हमारे पास फंड नहीं है, मुख्यालय की तरफ से अब तक कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, दिहाड़ी मजदूरों के बीच कई लोग बीमार भी हैं, अगर वे एक एक करके मरने लगे तो।
0: सुनो, तुम लोगों को हिम्मत से काम लेना होगा। फंड का रुपया खत्म भी हो गया तो कंपनी की स्टील, रॉड, सीमेंट, डीजल, ऑयल, पेट्रोल, टिम्बर, इन सब के ऊपर कूद पड़ना होगा। उन्हें ले जाकर बेच दो और फंड की व्यवस्था करो।
2: क्या
0: इंजीनियर को डराओ? चिंता बिल्कुल मत करो, मैं लीगल फाइट करा दूंगा, तुम लोग हारोगे नहीं।
1: लेकिन कंपनी ने ऐसे पुराने सामानों के लिए कोटेशन मांगा है।
0: तो क्या हुआ, क्या हुआ? अरे कोटेशन देने वाले व्यापारी जब कोटेशन का मुआयना करने आएंगे तो तुम लोगों ने भगा देना, पीट पीट कर उनका सर तोड़ देना, सामान को बेच देना और पैसे को दिहाड़ी मजदूरों में बांट देना।
1: लेकिन शास्त्री जी।
0: लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ध्यान रहे, मेरी भी कुछ निश्चित कीमत है, ये मेरे एजेंटों ने बता दिया होगा, तभी मैं मजदूरों के बीच आ सकता हूं।
1: क्या आप भी?

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी कल संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इस दौरान 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल प्रवास पर हैं। श्री प्रधान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उनके निवास पर भेंट की। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान दोपहर 1:30 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अपना संबोधन देंगे और आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। वहीं शाम 5 बजे वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कल बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच इस महीने की 17 तारीख को लखनऊ में और तीसरा और अंतिम मैच 20 तारीख को चेन्नई में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इस सुविचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, आज के समय में महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। महिलाएं अब केवल घर तक सीमित नहीं है बल्कि शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, राजनीति और तकनीक जैसे हर क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। इसी दिशा में स्मार्ट पहल एक महत्वपूर्ण कदम है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल है। बहनों, स्मार्ट एक ऐसा मंच है जहां महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित और बेचा जाता है। इस पहल के माध्यम से महिलाओं को अपने हुनर और प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। इसमें हस्तशिल्प, कपड़े, घरेलू सजावट की वस्तुएं, खाद्य सामग्री, कलाकृतियां तथा अन्य उपयोगी सामान शामिल हैं। यह पहल महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देती बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान भी प्रदान करती है। बहनों, स्मार्ट पहल के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिला उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना, छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देना, महिलाओं के कौशल और प्रतिभा को पहचान दिलाना, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कराना, समाज में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। स्मार्ट पहल महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करती है। इसके माध्यम से महिलाएं अपने उत्पाद बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत बनती हैं। इससे उनके परिवार की आय बढ़ती है और जीवन स्तर में सुधार होता है। यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को समान अवसर प्रदान करता है। कई महिलाएं जो अपने हुनर को केवल घर तक सीमित रखती थी, अब बड़े स्तर पर व्यापार कर पा रही हैं। बहनों, स्मार्ट से महिलाओं को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, नए कौशल सीखने के अवसर मिलते हैं, समाज में सम्मान बढ़ता है और छोटे उद्योगों को पहचान मिलती है। स्मार्ट पहल का प्रभाव केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। इससे बेरोजगारी कम होती है और देश के अर्थव्यवस्था में भी लाभ पहुंचता है। यह पहल महिलाओं को प्रेरित करती है, वे अपने सपनों को पूरा करें और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। बहनों, यह कहा जा सकता है कि स्मार्ट पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सक्षम बनाने का कार्य करती है। समाज और देश के विकास के लिए ऐसी पहलों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। यदि महिलाओं को उचित अवसर और समर्थन मिले तो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। बहनों, जब इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है, तब उसे कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। इसी प्रेरणा को दर्शाता है फिल्म संजू का प्रसिद्ध गीत कर हर मैदान फतेह, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत कर हर मैदान फतेह, जिसे फिल्म संजू से लिया गया था और जिसे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया था।
1: शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है यो, खुद को खुद से मिलाने का मौका है यो। सो बहनों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर ज्योति सिंह बघेल, जो योग के क्षेत्र में बहुत ही सालों से जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी कल्पना जी, नमस्कार
1: जी। अच्छा ज्योति जी, महिलाओं के स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है?
2: जी कल्पना जी, बिल्कुल मैं इसमें जवाब देना चाहूंगी आपको। महिलाओं के लिए तो योगा है ही, ये तो सभी वर्ग के लिए, पर जैसे आपका सवाल महिलाओं के लिए है,
1: जी
2: बिल्कुल, ये

0: शारीरिक मानसिक और भावनात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित अभ्यास से आपका हृदय, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है, आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं, बॉडी में जो जोड़ है, इनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बॉडी में जो हार्मोनल का जो बैलेंस है वो एक बैलेंस फॉर्म में आपकी बॉडी में देखने को मिलता है।
1: अच्छा, बढ़ती उम्र में महिलाओं को कौन कौन से योगासन करने चाहिए?
0: जी, बढ़ती उम्र में महिलाओं को जैसे कि आपका ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, भुजंगासन हो गया, त्रिकोण हो गया, वीरभद्र, ये सारे आसन जो है आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को फोकस करते हुए
1: सहायक होते हैं। अच्छा ज्योति जी, क्या योग तनाव और चिंता को भी कम करता है?
0: जी बिल्कुल करता है। योग में आप प्राणायाम ने आपने सुना होगा, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया।
1: हाँ।
0: और ये विशेषकर जो है आपका मेडिटेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं, मन की शांति के लिए आपको मदद करते हैं, आपका दिमाग में जो तनाव पैदा होता है, अलग अलग जो बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस देखने को आपको मिलता है उसको घटाने में मदद करते हैं।
1: अच्छा ज्योति, योग है तो महिलाओं की जैसे बढ़ती उम्र में हड्डियों और जोड़ों के लिए भी लाभदायक होता है क्या?
0: जी बिल्कुल, ये जब आप रेगुलर फॉर्म में एक्सरसाइज ये योगा करते हैं तो आपकी जो बॉडी की डेंसिटी है उसको बनाए रखने में मदद करता है। आपकी मांसपेशी और उसके आसपास के जितने भी संयोजी उत्तकों को मजबूत बनाता है, दबाव कम होता है और दर्द की तीव्रता घटती है।
1: अच्छा, महिलाओं को जैसे कि महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं घर में भी रहती, तो कितनी देर इनको योग करना चाहिए?
0: जी वैसे तो अगर आप रोज कर रहे हैं तो एक आपको 30 से 45 मिनट तो आराम से आप कर सकते हैं, बट जैसा आजकल का बिजी शेड्यूल चल रहा है एक छोटे समय से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करें और उसको 4 से 5 बार नियमित रूप में या हफ्ते में आप दिन बना लें कि मुझे 3 से 4 दिन करना है या 2 दिन रेस्ट करना है, और ऐसा कर करके आप इसको हफ्ते में पूरा कर सकते हैं।
1: अच्छा ज्योति जी, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी, जैसे कि महिलाओं की बढ़ती उम्र से संबंधित है ये, मेनोपॉज क्या होता है?
0: जी बिल्कुल, मेनोपॉज ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कल्पना जी, बहुत से लोग इससे मतलब परेशान हो जाते हैं, जबकि ये एक प्राकृतिक जीवन चरण, जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वैसे मेनोपॉज भी होता है, तो लोगों को इसके बारे में अवेयर भी होना चाहिए। स्थायी रूप से मतलब क्या होता है, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये बंद हो जाती है, आमतौर पर ये 45 से 55 वर्ष की आयु में देखा जाता है, पर क्योंकि आज का जैसे इतना बिजी लाइफ स्टाइल है, जो आपका खाने का और जो अनहाइजीनिक जो हैबिट लोग की फॉलो होने लगी है महिलाओं की, जी इनसे अभी अर्ली मेनोपॉज देखने को मिलने लगा है।
1: अच्छा ये ज्योति जी, क्या योग जो है मेनोपॉज की समस्याओं को कम भी करता है?
0: मेनोपॉज की समस्याएं बिल्कुल कम होती हैं। अब इसमें ये जरूर है कि औरतों को जानना चाहिए कि मेनोपॉज की समस्याएं हैं क्या, जो कि होती नहीं है, और औरतें डर के मारे इसको बना लेती हैं, क्योंकि औरतें डर जाती हैं कि नेचुरल प्रोसेस है जिसको वो नेचुरल नहीं समझती है, और जिस वजह से उनके अंदर डर पैदा होता है और धीरे धीरे अपनी बॉडी वैसे ढाल लेती है। नींद में कमी होना, थकान लगना, मूड स्विंग होना, चिंता, डिप्रेशन, ये सब जो है सिम्टम्स है मेनोपॉज के समय पे, और इनको योगा जो है कम करने में मदद करता है।
1: अच्छा जैसे कि ये मेनोपॉज के दौरान कौन कौन से योगासन लाभकारी हैं?
0: जी मेनोपॉज के समय पे आपको वो आसन करने चाहिए जो रिलैक्स दे सके आपकी बॉडी को, जैसे कि बाल आसन हो गया, शवासन हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, सेतु बंधासना हो गया, ध्यान श्वास की तकनीकें होगी, जैसे कि अनुलोम विलोम का आपने बहुत नाम सुना होगा।
1: हाँ।
0: नियंत्रित करेंगे तो बिल्कुल आपको मददगारी साबित होगा, और अगर आपकी जो मेडिकल कंडीशन है ज्यादा ही डीप में है तो बिल्कुल आपको अपने डॉक्टर से भी मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा ज्योति जी, मैं ये एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी, आप मेनोपॉज के समय महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: जी मेरा संदेश मेनोपॉज के समय यही है कि मेनोपॉज एक प्राकृतिक जीवन चरण है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है या शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। आप नियमित योग करें, एक संतुलित आहार खाएं और पर्याप्त नींद लें, सकारात्मक सोच रखें, व्यायाम को जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करें, अपनी रोज की जीवन शैली में शामिल करें, आपकी लाइफ स्टाइल को तो मेंटेन करेगा ही, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखें।

0: बहुत सी औरतें डर जाती हैं, उनकी अपनी पे डिपेंडेंसी, अपने पे जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है, तो उसको मेंटेन करेगा, आपकी फिजिकल कंडीशन उसको मेंटेन करेगा।
1: अच्छा ज्योति जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी की बातें हमको पता चली, और मैं आशा करती हूँ हमारी बहनों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। ज्योति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी बहनों से इतनी अच्छी बातें करने के लिए।
0: जी, बहुत धन्यवाद आपका कल्पना जी।
2: बहनों, भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे ही महान वैज्ञानिकों में डॉक्टर कमला सोहानी का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। वे भारत की पहली महिला बायोकेमिस्ट थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों और भेदभाव का सामना करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका जीवन संघर्ष, परिश्रम और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है। डॉक्टर कमला सोहानी का जन्म 18 जून 1912 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम कमला भागवत सोहनी था। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत तेज थी। विज्ञान विषय में उनकी विशेष रुचि थी। उनके परिवार में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी मिला। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में BSc की परीक्षा उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी और वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन उस समय महिलाओं के लिए विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना आसान नहीं था। जब कमला सोहनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में प्रवेश लेने का प्रयास किया, तब वहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक महिलाओं को प्रवेश देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कमला सोहनी ने हार नहीं मानी। उनके दृढ़ निश्चय और प्रतिभा को देखकर अंततः उन्हें प्रवेश दे दिया गया। हालांकि उन्हें कुछ शर्तों के साथ पढ़ने की अनुमति मिली। उन्हें पुरुष छात्रों से अलग रहना पड़ता था और अपनी योग्यता बार बार सिद्ध करनी पड़ती थी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी विज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों के समान सफल हो सकती हैं। डॉक्टर कमला सोहनी ने जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए। उन्होंने पौधों, दालों और खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों पर अध्ययन किया। उनका सबसे प्रसिद्ध शोध नीरा नामक पेय पदार्थ पर था। नीरा ताड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक पेय है। उन्होंने सिद्ध किया कि यह पेय विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होता है और बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उनके शोध कार्यों से देश में पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ी। बहनों, भारत की वे पहली महिला बायोकेमिस्ट बनी। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नई राह खोली। पोषण विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सम्मान प्राप्त किया। बहनों, कमला सोहनी ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी लिंग का मोहताज नहीं होती। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनकी सफलता ने समाज की उस सोच को बदलने में मदद की जिसमें महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। आज अनेक लड़कियां विज्ञान और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिनके लिए कमला सोहनी प्रेरणा का स्रोत हैं। बहनों, डॉक्टर कमला सोहनी का जीवन संघर्ष, साहस और सफलता का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा किया और भारत का नाम गौरवान्वित किया। उनके योगदान केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए भी प्रेरणा दी। हम सभी को उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। बहनों, हर इंसान के दिल में कुछ सपने, कुछ उम्मीदें और कुछ अनकही भावनाएं होती हैं। जब वही भावनाएं संगीत बनकर सामने आती हैं, तो दिल सीधे उनसे जुड़ जाता है। एक ऐसा ही प्यारा और भावनाओं से भरा गीत है, दिल मेरा एक आस का पंछी, जो फिल्म आश का पंछी से लिया गया है। और जिसे सुबीर सेन ने गाया।

0: छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी।
1: बहनों, अभी हमने सुना गीत दिल मेरा एक आस का पंछी, जो फिल्म आस का पंछी से लिया गया और जिसे सुबीर सेन ने गाया था। बहनों, गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, पसीना और धूल मिट्टी लेकर आता है, जो हमारी त्वचा पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इस मौसम में त्वचा की सही देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारी त्वचा स्वस्थ, साफ और चमकदार बनी रहे। सबसे पहले गर्मी में धूप से बचाव करना अत्यंत आवश्यक है। तेज धूप में निकलने से त्वचा झुलस सकती है और सनबर्न की समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर जाते समय टोपी या सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। इससे त्वचा

0: को हानिकारक किरणों से सुरक्षा मिलती है। गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है जिससे त्वचा पर गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए दिन में 2 बार चेहरे को ठंडे पानी से धोना चाहिए और साथ ही सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हल्के और प्राकृतिक फेस वॉश का उपयोग करना बेहतर होता है। शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। अधिक मात्रा में पानी, नींबू पानी, नारियल पानी और फलों का सेवन करना चाहिए जिससे शरीर में नमी बनी रहती है और त्वचा भी स्वस्थ रहती है। मैंने अंत में यही कहा जा सकता है कि गर्मी के मौसम में थोड़ी सी सावधानी और नियमित देखभाल से त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखा जा सकता है। यही आदतें अपनाकर हम अपनी त्वचा को गर्मी के दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
2: मैं विनय उपाध्याय, आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

0: सदी होती है, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। देश कार्यक्रम आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जीवन की प्रस्तुति है, और इसमें आज हम सुषमा

अभी आपने सुना बधाई गीत, आवाज़ थी सुषमा शुक्ला की। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। आज हम इसमें आपको सुनवा रहे हैं सुषमा शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए सुषमा शुक्ला का गाया बेलान है गीत।

सुषमा शुक्ला के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता मिश्रा के गाए कुछ गीत और भजन। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर की इस रचना से, आवाज संगीता मिश्रा की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता मिश्रा के गाए कुछ गीत और भजन। अब सुनिए मीरा की रचना, आवाज संगीता मिश्रा की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता मिश्रा के गाए भजन और गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं गीत रचना डॉक्टर विद्यानाथ वैद्य की।

0: मेरे भारत का।
1: संगीता मिश्रा के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत
0: उछाल में अंबर।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।
0: एक जिद की प्यास में
1: पेश है समय
0: समंदर पी लिया, बूंद बूंद पसीने निखरती जिंदगी।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल।
0: जन्म जी लिया
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाला सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान सुनना न भूलिए प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे, जिसमें आप सुन सकते हैं सिंधी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर वार्ता, भेंट वार्ता, कविता, कहानियाँ और भी बहुत कुछ सिंधी के मधुर गीत संगीत के साथ। तो सुनना न भूलिए हमारा ये कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। सिंधियत जी सुरहान प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे।

0: कार्यक्रम की शुरुआत
1: प्रभु जी
0: प्यासा सावन फिल्म के गीत से आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज में भी आपने सुना प्यासा सावन फिल्म का गीत, शब्द रचना थी संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म सौदागर से। आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की है, शब्द रचना और

0: अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है
1: जी। जैसे ये बीच की तो आप
2: लता मंगेशकर के गायक फिल्म सौदागर के इस गीत के साथ ही
1: कार्यक्रम इसमें भी क्या मात्रा
2: फिल्म संगीत अब संपन्न होता है
1: कि मात्रा कितनी रखेंगे
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश से थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार
0: एक हेक्टेयर के लिए और संकर किस्मों के लिए
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और अंतिम दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। बैठक में सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसे इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। बैठक से पहले ब्रिक्स वाटिका में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि इस बैठक का संदेश यही है, संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम।
1: ब्रिक्स का ये सम्मेलन जिसमें आज एक डिक्लेरेशन होगा और दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि पर्यावरण का संरक्षण इस समय बहुत जरूरी है, ये ब्रिक्स वाटिका में आज प्लांटेशन सभी हमारे सदस्य देशों ने, पार्टनर कंट्रीज के मित्रों ने किया है। ये आपस में स्नेह, सद्भाव, मैत्री और प्रेम का प्रतीक रहेगा और संदेश यही है, संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम, और इन पेड़ों की तरह हम धरती को बचाने का काम करते रहें।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भोपाल में श्री प्रधान ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी।
2: मैं आप सभी के माध्यम से नीट की सारे विद्यार्थियों को अपील

0: करता हूँ, आप भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाइए। 21 को बहुत व्यवस्थित तरीके से नीट की परीक्षा की जाएगी। एनटीए ने उनको और 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तय किया है।
1: प्रवास के दौरान आज श्री प्रधान ने शूटिंग एकेडमी से खिलाड़ियों से मुलाकात की। वहीं सूरजनगर में भोपाल सांसद आलोक शर्मा के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गृह विभाग की महत्वपूर्ण IG कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है। अब खबर मौसम की। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावनाएं जताई हैं। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। प्रदेश में श्योपुर, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी समेत कई जिलों में कल आंधी और बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित ओंकारेश्वर दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। संभाग आयुक्त डॉ. सुराम खाड़े ने कल ओंकारेश्वर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आगरमालवा जिले में आयोजित किए जा रहे शिविरों के तहत कल जिले के ग्राम बापचा, डोंगरगांव, सुधवास, सोयतकला और सुसनेर में जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए और शिवपुरी जिले के पोहरी में कल संभावित बाढ़ और वर्षाकालीन आपदाओं की तैयारी के संबंध में विकास खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।
2: दो दिन तीन दिन छाए में रखें, उसके बाद भंडार करें।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से 12-15 सुनेंगे। हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत

0: रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
1: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
0: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आई में स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
4: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
6: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के
7: ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है और आज वारफेयर

0: की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया? इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
3: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य

0: सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता, कार्यक्रम की पहली पसंद हम ले रहे हैं फिल्म लूटमार से, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले ने, शब्द रचना अमित खन्ना की है और संगीत राजेश रोशन का। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, आदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ से। कोटवा नारायणपुर बाबा पटरी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं आप सब की पसंद का फिल्म लूटमार का ये गीत, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। कमरुल्ला ठकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, रिदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान पोतरा, मुस्तफा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिंधोली जीरगंज बरेली से जिशान वारसी, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, आप सब सुन

चाहते हैं। प्रतिज्ञा फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

अभी आपने सुना प्रतीज्ञा फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और कार्यक्रम है आपकी फरमाइश, और कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमने ली है फिल्म वारंट से, आवाज़ किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आरडी बर्मन का। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिला गंज आलोड जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है धमनी किरवई से समेलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल धीवर, गोविंद धीवर की। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए आप सबकी पसंद का सुनते हैं फिल्म वारंट का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

वारंट फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमने ली है महबूबा फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, शब्द रचना आनंद बख्शी और संगीत राहुल देव बर्मन का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बैग कासिमा अली, नदीम अली। औरंगाबाद से राजेश सावले, पाटिल शीतल, राजेश राजदीप, राजेश और राशि राजेश। सपना संगीता रोड इंदौर से इस गीत को पसंद कर रहे हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म महबूबा का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आपने सुना महबूबा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत राहुल देव बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और आपके साथ हूं मैं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, राही श्रीमती सरिता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवांडकर, श्रीमती वैशाली गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर, कुमारी धूमी गवांडकर, परी सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है छत्तीसगढ़ के दतरंगी से भागवत वर्मा की, लेवई से गुलाबदास मणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगापुर से सालिक पुजारी, कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य आदित्य शिवानी शिवमाली की। तो आइए सुनते हैं। एक पसंद और मिली है इसकी मयंक कृष्ण रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदान दामिनी वर्मा की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मासूम से। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत आरडी बर्मन का है और इसे आवाज दी है भूपिंदर और सुरेश वाटकर ने।

0: भूपेंद्र और सुरेश वाडकर के गाए फिल्म मासूम के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। इसके साथ ही उनकी फ्रांस और स्लोवाकिया की दो देशों की यात्रा शुरू होगी। फ्रांस में प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। भोपाल में श्री प्रधान ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और अंतिम दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसे इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की महत्वपूर्ण IG कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। 19वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 सोमवार से शुरू होगा। मुंबई में एक सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान वृत्तचित्र, लघु फिल्में और एनिमेशन सिनेमा का प्रदर्शन होगा। और ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कल बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:00 और रात 8:35 पर। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य आप सुनेंगे रात 8:00। 9:30 पर आप सुनेंगे संस्कृति भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारती कार्यक्रम में सुनिए US प्रसाद का कर्नाटक सैक्सोफोन। ये दोनों कार्यक्रम आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन सकेंगे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

0: अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। आज का पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्ट कार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मनचाही गीत का ये पहला गाना। सुलक्षणा पंडित और भूपिंदर की आवाजें, गुलजार की बोल, कनी रॉय का संगीत, फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ताई गुंडाने की फरमाइश है। खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नाचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू और दतरेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूर हस्ते फिल्म का गाना

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं।
3: मुंजय गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाटिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी, खयाम।

मंच है गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोविंदगढ़ मांझी वाला करणपुर राजस्थान से राजू टूटेजा, खुश दिल उर्मिला टूटेजा, गुड्डू जीनू मम्मू स्माइल टूटेजा और शिव सेठी की फरमाइश पर है। इसी गाने को सुनना चाहते हैं खंडवा से दीपक कुमार, अनीता, समर्थ शाह, श्वेता शाह, अदिति शाह और अर्पित शाह। इसके अलावा फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रामेश्वर बाबूजी और राम सर मेड़ता राजस्थान के ये श्रोता हैं। समेलाल घीवर, युवांश कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धमनी किरवाई के श्रोता। और ये फरमाइश है बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, फिल्म का नाम है भाभी, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की तर्ज़।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूंडनुन और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया। अब सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी गीत ब्रह्मचारी फिल्म से है, रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: मुझको बिठा कर।
1: ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
2: मनचाही गीत।
3: मनचाहेगी
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
5: नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी।
1: इसके बाद भी क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी।
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी, एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार, सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं कहीं ये यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ

हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र सपनी की आज्ञा का पालन हो।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचती हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म, भीष्म, भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
0: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
1: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: भाई, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। वो देखिए, आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: सचमुच हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो, वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है?
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है। राजकुमारी,
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए, महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
1: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
2: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही? कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
1: कुल देवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
2: पुत्री गांधारी,

0: आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
1: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
0: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है। चलकर विश्राम करो।
1: जो आज्ञा।

0: तू कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यही रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तो चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझमें विचार शक्ति नहीं है?
1: अब मुझसे ना पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी ना बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: प्रवंचना हुई है राजकुमारी, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतन अंधकारमय पद की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा इंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप चुगुप समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराष्ट्र धृतराष्ट्र ज्योतिहीन है, जन्मान सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा
0: गांधारी,
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट, छोड़ दो।
1: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती, तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती। किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
0: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
1: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
0: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री।
1: क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
0: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
1: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
0: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
1: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: تتراشت.
1: आप विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है, आइए आइए ना।
0: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
1: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
0: क्या?
1: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ।
0: क्या हुआ, गिर पड़ी?
1: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
0: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
1: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
0: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर, न जाने किस किस से दी थी।
1: महाराज,
0: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूं लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी?
1: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
0: क्या?
1: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
0: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
1: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
0: क्या?
1: मेरा पातिव्रत यही मांग करता है, यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
0: और तुम इसे पातिव्रत कहती हो? ये तुमने क्या किया गांधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
1: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं है?
0: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गांधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया। यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
1: महाराज, मैं सोचती थी कि
0: अब भी समय है गांधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
1: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी हूं।
0: गांधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनी है, असहनी है ये सच। ओह, असहनी है ये सच।

0: महारानी की जय हो। बेबी एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
2: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी।
2: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
2: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
2: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
2: ओह, पगली कहेंगी। क्या तू जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
3: कांधारी,
2: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
3: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
2: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
3: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
2: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
3: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
2: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
3: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
2: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
3: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
2: अर्थात हस्तिनापुर का भावी शासन?
3: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
2: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
3: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
2: महाराज,
4: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
3: कहो सूत।
4: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
3: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
2: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ? पर भले ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती?

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश,
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक।
1: काश मैं देख सकती। किस पर किया है?
0: किस पर? दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। माँ देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, ना जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ हैं? उन्हें तो वारणावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुनी की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधर्व?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज।
0: कौन? विदुर, आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा?
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं, अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन ने?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
0: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदलकर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
0: विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
1: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित है।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: Science, light, sound, camera, action!
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
2: दोस्त नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल्स में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: एब्सोल्युटली,
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना,
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया, लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
1: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था,
0: आरडी
1: बर्मन साहब का, और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
0: करेक्ट,
1: वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे,
0: करेक्ट,
1: तो उन गानों पर उस संगीत पर कुछ उसमें कुछ नयापन लाना और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, सो तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे, और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था, आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए, तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
1: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ आपने।
0: तो डांस में इट वॉज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वॉज मोर अबाउट, इट वॉज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है, फिल्म में भी वो उन लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था, एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी, एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है, और कैसे

शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी मुझको चुनो ना, चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला। बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील, फील का गाना था।

एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंतरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे रामगोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीज़ें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पर, बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ यू नो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और रामगोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाचा पे कोरियोग्राफर की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज़ समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे यू नो डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज़ वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फ़ोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ यू नो एक अलग, एक पहचान मुझे इस फिल्म से मिली।

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो हाँ। गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही
0: इस तरह के क्या, क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, हाँ। अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे, लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ऐ जिंदगी गले लगा ले, और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था।
0: अच्छा अच्छा
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहाँ पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम के गाने या ऐसे फिल्मों के जहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोच कर, या साहिर लुधियानवी के गाने, सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा,
1: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्यागने में, तो क्या है। सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे।

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, ये एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी
0: नहीं, फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं,
1: नहीं किया।
0: बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जिसको,
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग डांस करने लगता है। वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ। मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ, मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस ज़माने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज़्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूज़िक। और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूज़िक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूज़िक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूज़िक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ। पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूज़िक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो हैं अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूज़िक को सुन के 10 चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आप को ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही

0: चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटीफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक। और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें, तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस। जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं, और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ। ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं, और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो, कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
1: छानना पड़ता है।
0: छानना पड़ता है, दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूँ जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूँ वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन होती
1: लिमिटेशन होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो

0: कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है, क्योंकि कहानियां के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो, तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं, लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
1: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे,
0: जरूर
1: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते
0: जरूर
1: चलेंगे।
0: बाहों में।

0: यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं। गाने में बीट्स होती हैं, ओके। एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके। 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है। चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए। क्या हो रहा है उस पर, वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करें, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वही चीज़, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगा, हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से, कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, अब कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट, अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो होते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे झट सक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर यू नो झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो यू नो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्ट कट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है, ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो ज़बरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मज़े नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ 2-3 ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूँगा, और अगर लूँगा तो वाइड लूँगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियाँ हैं छिप जाएँ और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है। तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
0: तो दोस्तों आप समझ गए, ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हों या सिंगिंग शोज हों, गाने तो विविध भारती के ही बजते
1: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है
0: हैं।
1: जो मैंने नौरा के साथ किया, वो ज़्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके
0: कौन
1: हैं।
0: सा?
1: भीगी भीगी रातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वो वाला गाना।
0: अजनबी।
1: हाँ, अजनबी, वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ हम कर रहे हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ, जिसे भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं। उसके बाद सुनिएगा युववाणी।
1: शाम के 5 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। इसके साथ ही उनकी फ्रांस और स्लोवाकिया की दो देशों की यात्रा शुरू होगी। फ्रांस में प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। इंदौर में आयोजित 5 दिवसीय ब्रिक्स देशों के उच्च स्तरीय कृषि सम्मेलन के अंतिम दिन ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने शहर के मेघदूत उपवन में विकसित ब्रिक्स वाटिका में फलदार पौधों का रोपण किया। प्रदेश में उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ रोजगार सृजन को गति प्रदान कर विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए कल कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न जिलों के MSME उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। 19वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 सोमवार को शुरू होगा। मुंबई में एक सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान वृत्तचित्र, लघु फिल्में और एनिमेशन सिनेमा का प्रदर्शन होगा। और ऑस्ट्रेलिया बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

योग सिखाता है और जीवन में अनुशासन और संतुलन लाता है। दोस्तों, हमारे समग्र विकास के लिए योग के कई लाभ हैं। हम युवाओं को कभी पढ़ ध्यान मन को शांत करते हैं और एंजाइटी यानी चिंता को कम करते हैं। नियमित योगाभ्यास से मस्तिष्क में रक्त का संचार बेहतर होता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता, फोकस और याददाश्त बढ़ती है। आधुनिक जीवन शैली में घंटों एक ही जगह बैठकर पढ़ने या काम करने से कमर और गर्दन में दर्द की समस्या आम हो गई है। ऐसे में योग शरीर को लचीला और पोस्चर को सही रखता है। दोस्तों, यौगिक क्रियाएं शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालती हैं और पाचन क्रिया एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखती हैं। इससे दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। योग से भावनात्मक संतुलन में भी मदद मिलती है। युवावस्था में हार्मोनल बदलाव और रिश्तों के दबाव से मन विचलित हो सकता है। ऐसे में योग सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, रोजाना फिट और सेहतमंद रहने के लिए योग में आसन और प्राणायाम का संतुलन बनाना सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत भाग मिल्खा भाग फिल्म से सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में।

0: और मानसिक थकावट मेरी भी एक समस्या रही है, लेकिन जब से मैंने योग को अपनाया, इसे करना स्टार्ट किया, मुझे बहुत ही बदलाव। तो मैं सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अपना काम रोककर बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। आंखें बंद करके गहरी सांसें लेने का ना, वो जो एक ठहराव होता है, वो आपके दिमाग को भीतर से पूरी तरह फ्रेश कर देता है और आपके काम को फोकस बढ़ा देता है। तो मैं बोलूँगा कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रोज सुबह 5 मिनट का कोई भी एक आसन, जैसे कि भुजंगासन, आपकी रीढ़ की हड्डी को आराम देता है। और मानसिक शांति के लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, जो मैंने खुद करके देखा है और इसके प्रभाव भी देखे। जब आप अपनी बाकी की जिम्मेदारियों के लिए इतना वक्त निकालते हैं, तो अपने स्वास्थ्य के लिए सुबह आप 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप कल सुबह जल्दी उठेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, खुद को स्वस्थ रखेंगे और प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत दिल तो पागल है फिल्म से, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में।

दोस्तों, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है विज्ञान धारा योजना। ये वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक योजना है। इसके कई प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे क्षमता निर्माण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संस्थागत और मानवीय क्षमता को बढ़ाना, मौलिक अनुसंधान, अनुवांशिक अनुसंधान और सहयोगात्मक अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों, ये योजना भारतीय शोधकर्ताओं और उनके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है। इससे ज्ञान का आदान प्रदान होता है, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को सुगम बनाया जा सकता है और भारत को एक वैश्विक वैज्ञानिक भागीदार के रूप में स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, विज्ञान धारा योजना भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न मौजूदा योजनाओं को एक एकीकृत ढांचे के अंतर्गत लाकर इसका उद्देश्य दक्षता में सुधार करना, दोहराव को कम करना और देश के वैज्ञानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अधिक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत आवारापन फिल्म से मुस्तफा जाहिद की आवाज में।

दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे आल्हा गायन के विषय में। आल्हा एक ऐतिहासिक वीर पुरुष के जीवन से संबंधित वीर रस प्रधान लोक गाथा है। आल्हा गायन का प्रचलन पावस ऋतु में है। बुंदेलखंड में आषाढ़ के महीने से लेकर सावन के कजरी त्योहार तक गांव गांव में आल्हा गाया जाता है। गांव में किसान लोग चौपाल चबूतरों पर एकत्रित होकर ढोलक की थाप पर मधुर परंतु ओजस्वी और बुलंद सुरों में आल्हा गाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी दूसरे राज्य में रहने वाले व्यक्ति से बुंदेलखंड के बारे में पूछते हैं, तो हो सकता है कि वो इस क्षेत्र से बहुत ज्यादा परिचित ना हो, लेकिन उन्होंने लोकगीत आल्हा गायन के माध्यम से आल्हा ओदल के बारे में जरूर सुना होगा। आल्हा गायन बुंदेलखंड के सबसे महत्वपूर्ण वीर गाथाओं में से एक है। मौखिक परंपरा में इसका ऐतिहासिक महत्व है। ये केवल बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि राजस्थान, बेसवाड़ा, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कन्नौज और पश्चिमी बिहार जैसे कई स्थानों पर भी गाया जाता है। इसमें श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस का सुंदर समावेश मिलता है। वीर रस इसमें प्रधान रस है। दोस्तों, इस गाथा में तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी स्थितियों का समाहार मिलता है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत और करते हैं थोड़ा सा मनोरंजन। भूल भुलैया फिल्म से श्रेया घोषाल और एमजी कुमार की आवाज में।

आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं फिल्म डी डे से। शंकर महादेवन मुनव्वर और जावेद अली की आवाज में ये रचना सुनिए।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म शराबी का गीत। आशा भोसले किशोर कुमार रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्स पर। शराबी फिल्म के बाद अब आपको सुनवाते हैं सोनी महिवाल फिल्म का गाना। शराबी में जहां अमिताभ बच्चन और जया प्रदा थे, वहां सोनी महिवाल में सनी देओल और पूनम ढिल्लन। इस गीत में आवाज है आशा भोसले और अनवर की, आनंद बख्शी के शब्द, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

सोहनी महिवाल के गाए इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के विषय में बता दें।

श्रोताओं, आज है शनिवार, तो रात 10 बजे आप सुनते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। सुनिएगा आज रात 10 बजे भी ये कार्यक्रम, इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:30 पर सुनिएगा अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती। स्पॉटलाइट का वक्त होता है रात 9:15। News@9 ये कार्यक्रम सुनिए रात 9 बजे। समाचार हैं, आप सुनते हैं अंग्रेजी समाचार News@9 रात 9 बजे, और हिंदी समाचार यानी समाचार संध्या रात 8:45 पर। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत शाम 7:21 से। आज का यह कार्यक्रम लोकगीतों पर आधारित गम्मत होगा। सुर्खियों में कार्यक्रम सुनिएगा रात 8 बजे, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत में शाम 6:45 पर कलाकार होंगी प्राजक्ता सावरकर। शाम 6:30 पर लोक संगीत में सुनिए रुद्रदत्त दुबे के गाए लोकगीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:30 पर। आपको एक बार फिर बता दें, रात 9:30 बजे सुनिए

अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा रात 10 बजे से। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं समाचारों के लिए, चलते हैं दिल्ली केंद्र अब से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1,600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सके।

में गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का यह पहला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में, यह गीत है श्रोताओं आपके लिए।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म देश प्रेमी का गाना। इसी के साथ देशभक्ति फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:20 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: EM

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे रुद्रदत्त दुबे। आकाशवाणी जबलपुर का ये केंद्र है मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए सुग

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थीं प्राजक्ता सावरकर शिंदे। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अपने श्रोताओं को हम बता दें, श्रोताओं, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 जून 2026 को सुबह 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस ऑनलाइन योग सत्र में हिस्सा लेने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर तुरंत पंजीयन करें। इसके साथ ही 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले मुख्य योग उत्सवों के पंजीकरण के लिए योग संगम पोर्टल शुरू हो चुका है। सभी नागरिक अपने निजी मोबाइल या डिवाइस से इस मुहिम में अलग अलग शामिल हों और स्वस्थ भारत के इस राष्ट्रीय संकल्प को सफल बनाएं। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 7 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र अब से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगी। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जीतेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और

0: और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। लुधियाना में श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल लोकोन्मुखी और विकास को प्राथमिकता देने वाला रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री अलमुर्गन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। खेलों में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रशांत कुमार सिन्हा। Prime Minister Narendra Modi embarked on a 6-day visit to France and Slovakia today to further deepen bilateral ties with the two European countries. On the first leg of the visit, the Prime Minister will reach the French city of Nice tonight. Mr. Modi will hold bilateral talks with President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will jointly inaugurate the Bharat Innovates event. In his departure statement, Mr. Modi said, "The focus of the visit to France will be on boosting economic as well as cultural linkages between the two countries." An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of 5 air warriors. The Indian Air Force, IAF, said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has expressed grief over the loss of 5 air warriors. In a social media post, Mr. Singh said, "Their courage and service to the nation will always be remembered with pride and gratitude." Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes.

0: प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक संपन्न। कृषि नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कामों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर सुशासन की मिसाल पेश करने वाला मध्य प्रदेश बना पहला राज्य। और प्री मानसून गतिविधियों से मौसम हुआ सुहाना, भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन आज एक सर्वसम्मत इंदौर डिक्लेरेशन के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु, सहनीय खेती, कृषि व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक संकट और अनियमितताओं के बीच ब्रिक्स देशों की ये बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश लेकर आई है। श्री चौहान ने बताया कि सदस्य और सहयोगी देशों के लगभग 60 विदेशी प्रतिनिधियों सहित कुल लगभग 100 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि और खाद्य सुरक्षा के प्रश्न पर ब्रिक्स देशों के बीच कितना गहरा जुड़ाव और गंभीरता है।
1: ब्रिक्स देशों के बीच आपस में कृषि व्यापार बढ़े, आपस में सहयोग हो, इस पर चर्चा हुई। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में रीजनरेटिव फार्मिंग, जलवायु अनुकूल खेती और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, इस पर भी चर्चा हुई है। फूड सिस्टम और कृषि के लिए नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राजधानी भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। श्री प्रधान ने यहाँ मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय वो था जब देश को खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं खरीद ना पड़ता था, और आज केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो के हिसाब से मुफ्त अनाज मुहैया करा रही है।
2: आज हम एकत्रित हुए हैं भारत में विकास की, आत्मविश्वास की, प्रगति की एक उत्सव मनाने के लिए। बीते 12 साल से विश्व के अद्वितीय लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल 12 साल जब पूरा हुआ, उसके तहत पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया।
0: सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी सहभागिता की। इससे पहले श्री प्रधान ने आज सुबह राज्य के खेल मंत्री विश्वास सारंग के साथ शूटिंग अकादमी में खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल और शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि खिलाड़ियों के शैक्षिक रिकॉर्ड और खेल उपलब्धियों को उनकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा। श्री प्रधान ने बताया कि पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में खेल कोटा लागू किया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अफवाहों से बचने और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह भी दी। प्रदेश में उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ रोजगार सृजन को गति प्रदान कर विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए कल भोपाल के कुशाभाव ठाकरे सभागार में वृहद कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न जिलों के MSME उद्यमियों, स्टार्टअप और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हित लाभ भी वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप भी उपस्थित रहेंगे।
3: ये समाचार

0: और आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की महत्वपूर्ण IG कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है।
2: मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने राज्य से यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सलवादियों का पूरा सफाया करके अपने दमखम पर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की, अपने यहाँ के इस नक्सलवादी दंश को समाप्त किया।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 22,000 पदों पर भर्ती के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने इवेंट, एग्जीबिशन और माइज के प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुंबई के सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रतिष्ठित 10वें डेसेनियल एग्जीबिशन एक्सेलेंस अवार्ड्स 2026 में MP टूरिज्म को कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट में उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार देश के इवेंट, एग्जीबिशन और माइज सेक्टर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक दिलीप कुमार यादव ने टीम के साथ ये पुरस्कार ग्रहण किया। महिला स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शहडोल जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर निवास के पास पुराने RTO कार्यालय की भूमि पर 3.5 करोड़ की लागत से सुविधाओं से युक्त विशेष परिसर का निर्माण किया जाएगा। ये परिसर महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पाद के प्रदर्शन और विपणन के लिए समर्पित होगा। लगभग 1 एकड़ भूमि पर परिसर का निर्माण होगा। परिसर में 32 दुकानें बनाई जाएंगी जिसमें महिलाएं अपने हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद, घरेलू सामग्री और अन्य उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। यहां 4 दुकानों के व्यावसायिक परिसर भी बनेगा जिसके किराए से पूरे परिसर का मेंटेनेंस किया जाएगा। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून की प्रवेशता की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। आज भी राजधानी भोपाल में दिनभर उमस भरी गर्मी के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज जबलपुर में एक निजी संस्था द्वारा विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना और जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराना है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में कल पशु कल्याण समिति, पशु क्रूरता निवारण समिति और जिला गौ पालन गौ संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई और नर्मदापुरम जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे नवांकुर अभियान के तहत कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने ग्राम पंचायत रंडाल पहुंचकर सीड बॉल निर्माण गतिविधि में हिस्सा लिया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक संपन्न। कृषि, नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कामों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर सुशासन की मिसाल पेश करने वाला मध्य प्रदेश बना पहला राज्य और प्री मानसून गतिविधियों से मौसम हुआ सुहाना। भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में हुई बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनबे बारे सबई किसान भज्जा और बिन्ना हरन से लखन भज्जा की दो हाथ जोड़ के राम राम। किसान भैया हरो, सबसे पहलू तो अब यह सो है कि आज शनिचर को दिन है, सो हम सबई जनों को स्वागत करत हैं आज की गम्मत में। और अब बतकाए खो आगे बढ़ाएं तो जो टेम अपने खेतन में खाद कूड़ा फैला के बखन्नी करबे को है, बखन्नी करबे से खेत की मिट्टी जो है उमें पुलाई आ जाते हैं और मिट्टी में दबे भए जिन कीट पतंगा होते हैं वे ऊपर आ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और हम जोसोई क्या वो चाहते हैं भैया कि जुन भैया बिन्ना हरों ने ई साल मान लो यह सो विचार बनाओ है कि हमें धान को रोपा लगाने हैं तो थरो डारबे को जो अच्छो मौका है, और सब्जी में सोई भटा टमाटर और मिर्चन को थरो सोई अवई डार देवे तो ज़्यादा अच्छो है। भैया बिन्ना हरो, अपने औरों से का बताएं कि उदना 5 जून के दिना अभी निकल गई 5 जून, अब आ 13 है तो 5 जून के दिना सवेरे सवेरे बट्टू कक्का को फोन आ गओ। हमने बात करी काय कक्का इतने सकार है, सो केन लगे तुम्हें पता नहीं है बिसर गए का, आज हमारा जन्मदिन है। हमने कही कक्का जा तो चित्त रही, मानो आज होटल में चल खे खाना खावे को न्यो तो दे रहे हो आप। सो कहन लगे लखन भज्जा, खाना तो अपन घर ही में खे भी, मनो तुम्हें हमारे संगे हारे चलने। और आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस में 5 पौधा लगा बे के लाने चलने हैं, और जे 5 ही भरन के हैं। हमने कही बधाई हो बट्टू कक्का, तुम तो बहुत बड्डी समस्या के समाधान को हिस्सा बन रहे हो। सो कहने लगे भैया तुम्हारो तो जो ही काम है हर एक बात में समस्या को समाधान निकारन को, किए सो आए बताओ तनक। हमने कही कक्का हारई में चल खे बते हैं, अबे फोन काटो और तिगड्डा बारी पुलिया पे मिलो, जो लो हम आउत हैं। ले भैया जब बट्टू कक्का के संगे हारे पहुंचे तो हमने कही पहलू तो जो पौधा जिनते अपन लाए हैं जी उमदा लगाओ और इन्हों खाद पानी दो संगई। सो भज्जा पौधा रोपन तो हो गो, और हमने कही बट्टू कक्का देखा था के दिनों दिन इतो प्रदूषण बढ़ रहा है कि बेहिसाब जिको सीधो असर मनुष्यन पे पड़ रहा है, और सभी जीवधारियों में और सबसे पहलू तो हवा प्रदूषित हो रही, पानी प्रदूषित हो रहा हो, अन्न प्रदूषित हो रहा हो, और जे ही चीजें जीवन में सबसे पहलू जरूरी हैं जीवन जीवे के लाने। मनो कहू चाहिए कि पूरा पर्यावरण प्रदूषित और सीधो असर मानव स्वास्थ्य पे, और कई जाए तो प्रदूषण एक धीमो जहर है जुन हवा पानी धूल जैसी चीजन के माध्यम से आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाते है और रोगी बना देते है। अरे भैया इसे तो जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधा वनस्पतियन तक हो जो प्रदूषण सड़ा गलाक है नष्ट कर देते है। प्रदूषण तो भयानक बीमारियां सोई भैया बेजा फैल रही हैं, जैसे अपन कहें तो कैंसर तपेदिक रक्तचाप सुगर दमा हैजा मलेरिया चरम रोग आंखों के रोग और क्यों बननी बीमारी भैया, जे तो तनक सिया गिनाई हमने और भोगन खो तो अपने खे पर है नहीं। इसे जो है कि अपने खो काबू में सोई करने पर है, जल मानो के जुन जल के स्रोत हैं उनको स्वच्छ साफ रखने हैं, नदियन की तालाबन की कुंवन की नलन की सब जहां की साफ सफाई बहुत दम ज्यादा जरूरी है। कैसे के जल तो अपने से लेखो सो पशु पंछी सबई पियत है, तो नदी तलवन में गंदगी न फैलावे, गाड़ी वाहन और अपन जात हैं तो पशुअन को सीधे नदिया और तालाब में क्या तो धोऊ लगत और सपराऊ लगत, निस्तार से निकरबे बारो जुन गंदो पानी है वो उकी नाली तालाबन में न जोड़े नदियन में न जोड़े। आप और ने देखो हुई है कि फैक्ट्री और कारखानन से निकरबे बारो जुन धुआं होते है वो चिमनी से कैसो करिया करिया निकरत है जुन शुद्ध हवा को दूषित करत है। आजकल अपन सोई देख खेतन में एक काम करन लगे कि नरवाई और जो प्यार होत ना पराली उमे आगी लगा खो बारन लगे हैं, इसे सोई भैया बहुत धुआं निकरत है। तो इन सब चीजों पे अपन हम कंट्रोल करने पर है, और रासायनिक खादन की जहां अपन हो जैविक खादन को उपयोग करने पर है अच्छी भरपूर फसलें लेवे के लाने। अब दूसरी बात जा है कि जिन पेड़ पौधा बट्टू कक्का ने अपने जन्मदिन में लगाए बे अपन खो भैया
सब जनों के अपने अपने जन्मदिन में अगर कभी नहीं मिल पा रही है फुर्सत, तो अपने अपने जन्मदिन में तो फुर्सत मिला थे अपन अच्छे काय सुबेरे से सपल लेते हैं, नए नए उन्ना कपड़ा पहन लेते हैं और बढ़िया फेरेते होते घूमबे के लाने जाते हैं। तो भैया एक दो ठज्जा पौधा लाए और कहूँ भी रोप दो हम कह, जैसे अपन कई जने ऐसे भैया हने सोई हैं कि जिनके तो जमीन नहीं है, अब भी कहते भैया हमारी खेती नहीं है हम कहाँ रोपें। अरे भैया इतनी लोग खेती सड़क किनारे तो देखो जो तो और बड्डो परोपकार हुई है, अच्छे दूर तनक जाखो और लगा दो जामन के पौधा, बरिया के पौधा, पीपर के पौधा, आम के पौधा, काय काय के बताएं सब कछु के लगा दो बढ़िया अपने जीवन को भी सुख प्रदान कर हैं और बतकाओ हम बीच बीच में कर हैं। मनु जी गावे बारे भैया हने हमारे मुँह को देखा जहाँ मुझको बतकाव करत तो फिर इनकी नजरें हमारे को दाई आ जाती हैं, तो हम अपनी इतनी बात कहें फिर इन औरों के लाने जो माइक दे दें कि वन में जब से आए थे भाई बहुत खुट पाए, तितर बितर घर हो गओ कौन से का बतियाएं, कौन से का बतियाएं लगी जा चोट करारी, सूनी कुटिया पड़ी कहाँ गई सी सुकुमारी, कहत लखन कविराय राम खोजत हैं वन में, हर बेखो भूमि को भार आए थे ऐसे वन में।

हाँ तो किसान भैया हरो, अब बारी है कि जोन अटका के अपने 15 दिन पूरे हो गए हैं और फिर आज अपन कौन सो अटका बूझे बारे हैं। तो पहलू तो अपन जोन अटका के 15 दिन पूरे हो गए हैं वो को जवाब बताएं और अटका का बोलोगा तो वो बताएं। अपनी गम्मत में 30 मई 2026 शनिवार के दिन पूछोगा हो तो कि पांच कबूतर पांच ही रंग, महल में जाखें एक ही रंग। एको जवाब है भैया पान। और जैसे कि अपन और जानत हैं कि एक पहलू से कही जात है परंपरा से अपन सुनत चले आए सियानों से कि पिया बाजारे जात हो चीजें लाइयो चार, सुगा परे वा किलकिला और बगला की उनहार। तो जो ऐसो है कि पानी आए तो पांच कबूतर पांच ही रंग, महल में जाखो एक ही रंग, जब अपन इनको पान खून लगू लगाओ खाओ तो भैया वो तो आप और खुद खा के फिर जान जे हो कि कैसो हो जात लाल लाल मुँह। तो जो एक हो जवाब ऐसो है। अब रही बात काय की के हम काय अटका बूझवे बारे हैं तो आज को अटका अपनो ऐसो है ए चिट्ठिया में लिखे आओ है जहाँ हमने उलट पलट खो देख ली और अब शुरू से पढ़वो शुरू करत हैं। लिखत हैं कि लखन भैया मधुबंती बिन्ना और गम्मत प्रस्तुत करवे बारी आपकी जो टीम है सब जनों के लाने हमारी दो हाथ जोड़ के राम राम और नरम देहर की स्वीकार होवे। गम्मत कार्यक्रम मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर होत है। इन्हें 11 अप्रैल के अटका को जवाब लिखो पहुंचाओ है और 11 अप्रैल भैया उ दिना हम हते गम्मत में तो अटका बोलोगा तो के बा गई जाय आ गई। इन्हें लिखो है भैया ने के ई को जवाब है नज़र तन्नक में उतर गई और पलक नेचे करो तो इते आ गई। आगे लिख रहे हैं कि महोदय जी कृपा कृपया श्रोताओं के अधिक से अधिक पत्रों को कार्यक्रम में शामिल करने से श्रोताओं का उत्साह बढ़ता है और आपके द्वारा उन पत्रों का उत्तर बहुत ही मीठी और सरल भाषा में देने से श्रोताओं के मन में खुशी होती है। ऐसो इन भैया अपनी भाषा में लिखो है तो जा तो बहुत अच्छी बात है। मनो हम तो जा के हैं सभी श्रोताओं से निवेदन करें कि भैया हरो आप और खूब मुतकिलो चिट्ठी डारो सो हम आए तैसे हम और खूब मुतकी मुतकी आप औरों की चिट्ठी पढ़ें और जा चिट्ठी लिखवे बारे जो भैया हैं जे अब हमने एक तरफ तो पढ़ ली अब दूसरी तरफ नियमित श्रोता हैं सुमत कुमार जैन।

पिंडई जिला मंडला के। अब इन्हीं की चिट्ठी में जुंजो अटका लिखो आओ है अपनो आज को जोई सवाल कहे है। चिट्ठी में कैसो अटका लिखो है अब बोई बुझ रहे कैसो के उजली धरती काला बीज ज्ञान बांटने वाली चीज। अपनो आज को अटका जोई है जोन सुमत कुमार जैन जी ने हमें लिखो पहुंचाओ है अपनी चिट्ठिया में के उजली धरती काला बीज ज्ञान बांटने वाली चीज। और सभी सुनवे वारों से सोई हमारा जोई निवेदन है भैया के आप और अगर अपनी चिट्ठियन में अटका लिखो पहुंचावो चाहत हो तो बिल्कुल हमारे ते स्वागत है आपकी चिट्ठियन को आपके अटकों को और संगे उमें जवाब जरूर लिखो पहुँचाइयो ताकि हमें इत ऐसे बतावे में सरलता मिले है। हम जरूर आप और सब पूछे थे और वही दिना को वही दिना नहीं बताएं 15 दिना में बताऊ थे मनो आपसे जो ही निवेदन है कि अटका लिखो जवाब लिख दो और हमारे तेलो चिट्ठियाँ पहुंचा दो। जा सुमत कुमार जैन जी को चिट्ठी लिखवे के लाने और अटका तेलो पहुंचावे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद दो जा रहा है। अटका अभी इनको हम फिर से दोहरा दे हैं चिट्ठी लिखवे के लाने एक बार फिर से धन्यवाद। और अब गम्मत खो आगे बढ़ाएं इतनी बात के खो अपनी कि काया झूठी है सदा साँचो है एक ही जीव पचरंग चूनर ओढ़खें हिये बसाले पीऊ हिये बसाले पीऊ पीऊ का सिमरन कर ले जग में होए महान जो भाव बाधा हर ले। कहत लखन कविराय काम क्रोध मद लोभ सताया मृत्यु लोक में आर सदा है झूठी काया।

0: पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हाँ, तो किसान भैया, अब हम फिर से चिट्ठी उठा रहे हैं और चिट्ठी पढ़ने के पहले आज को अटका जुन सुमत कुमार जैन जी की चिट्ठी में लिखे आओ है। अपने अटका ऐसो है कि उजली धरती काला बीज, ज्ञान बांटने वाली चीज, जो अपने आज को अटका है और 15 दिना के भीतर चिट्ठियन में लिखों ईको जवाब पहुँचाऊने हैं। जुन सुनवे बारे भज्जा बिन्ना हरों ने मान लो देरी से रेडियो चालू करो है तो उनके लाने हम इतो बतावो चाहत हैं कि जो गम्मत कार्यक्रम कृषि जगत कार्यक्रम में आप आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से सुन रहे हो। अब जा चिट्ठी हमें मिली ग्राम मंगेला पटोरी तहसील बहोरी बंद जिला कटनी से अपने नियमित श्रोता हैं भगवत सिंह लोधी, प्रशांत सिंह, नंदलाला, अजय सिंह, डॉक्टर सुरेश कुमार, ऊषाबाई, लक्ष्मीबाई, रेखाबाई, पाकर से भैया राम, जालम सिंह पटेल, रमेश सेन, कौड़िया से पंचम लाल मूर्तिकार, इन सभी जनों की तरफाऊँ से अपने लाने जय राम जी की और नरम देहर की लखों पहुंचाई गई है कि लखन भैया, मधुबंती बिन्ना, आप और अनके लाने हमारी राम राम और नरम देहर स्वीकार होवे। सो भैया बिल्कुल स्वीकार भाई। आगे जी लिखत है कि 25 अप्रैल की गम्मत में माधुरी बिन्ना ने गम्मत सजाई हती और उन्हें जोन अटका बोलो हतो कि काकी के कान हैं, कक्का के कान नैया, काकी बुद्धिमान है और कक्का चतुर सुजान नैया। तो ये मैं इनने लिखों पहुँचाओ है कि करैया और तबा, माने चिट्ठिया में इनने जवाब पूरे लिखों पहुंचाओ है। एक चिट्ठी में और इनने 30 मई में पूछे गए अटका को जवाब लिखों पहुंचाओ है। राम जोहाल लिखबे के संगे संगे के पान है इको जवाब। सो जा चिट्ठी पहुंचावे के लाने, जवाब लिखबे के लाने अपन इन सुनबे वारों के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक चिट्ठी और है हमारे ढेंगा बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश के अपने नियमित श्रोता संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई से हैं और विकास सिंह जी की तरफ से। सो इनने सो ही अपने कार्यक्रम की प्रशंसा लिखों पहुँचाई है और लिखो है कि गम्मत कार्यक्रम मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर है, सुनबे में बड़ो मीठो लगा थे। और इनने सुमत कुमार जैन जी ने तो भैया अपनी चिट्ठी में यह सो लिखो है कि भैया जो नापो रहे जब बुंदेली बोली बोलत हो, ये में जा इतनी लो मिठास कहाँ से ले आउत हो और घोर देत हो जिन हमारों के कानों में ऐसी मीठी लगत है कि हम कैसी बताएं। तो भैया देखो जाए आपने चिट्ठी में अटका सोई लिखों पहुंचाओ है और बुंदेली बोलबे को जो है हिसाब किताब ऊ के बारे में आपने तारीफ करी है सभी बोलबे बारन की। सो आप तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते रहे हैं आज की गम्मत में और अपनी इतनी बात कहखों फिर इन बिन्ना हन के लाने जो माइक सौंप दो जे है कि बनी बनाई प्रीत खो पल में दई बिगार, ऐसी जानी ने हती करते ने शुरू से प्यार, करते ने शुरू से प्यार मोह में ऐसे बंध गए, मेहंदी में ज्यों रंग हाथ बांटत में खंध गए, कहत लखन कबीराए जुलम मत कर हर जाई, टोरों ने करखें प्रीत, प्रीत है बनी बनाई।

हाँ तो किसान भैया हरो, हम फिर से अपनो अटका दोहरा रहे हैं। जिनने लिख लो है तो मिला लियो, अगर नहीं लिख पाए हो तो लिख लियो। अपनो आज को अटका है, उजली धरती काला बीज, ज्ञान बांटने वाली चीज, जो अपनो आज को अटका कहानू। और जा चिट्ठी हमने उठाई है, लिखी गई है भैया, मुकाम पोस्ट मिडली वाया बरमान, जिला नरसिंहपुर के अपने नियमित श्रोता हैं कमल किशोर यादव, जोगेंद्र सिंह यादव, धन्नू लाल, हरी शंकर, मुलायम सिंह, चंद्रका प्रसाद, रामनाथ, तुलसी, कोमल प्रसाद और इनके सबरे गांव भरे के दोस्त बंधु। तो जे लिखत हैं के गम्मत प्रस्तुत करवे बारे लखन भैया मधुबंती विन्ना, आप सभी जनों के लाने और गावे बजावे बारे भैया विन्ना हरों के लाने, यादव परिवार की ओर से दो हाथ जोड़ के जय राम जी की और नरम देहर की स्वीकार होवे। आगे इनने लिखो है कि 9 मई 2026 और 16 मई 2026 की गम्मत इनने सुनी और उके अटका सोई लिखो पहुँचाए हैं। तो 9 को अटका इनने लिखो है भैया के जो चार अंगूठा और जे 16 ठज्जा उंगरियाँ होते हैं, ऐसो एको जवाब लिखो पहुँचाओ है। और 9 तारीख को अटका इन्हें लिखो पहुँचाओ के मांग, 16 तारीख को के मांग भरत हैं, भज्जा भरत है एक ही बेरे और भोजी भरत रहे थे फिर जिंदगी भर। तो मांग भरे को अटका है तू तो जोशी ने सही सही लिखो पहुँचाओ है। आंगे जी लिख रहे हैं अपनी चिट्ठी में कि भैया तनक धार्मिक लोकगीत सुनवाएं तो बड़ी अच्छी कृपा रहे है, कायसे के जो पुरुषोत्तम महीना चल रहा हो। सो भैया आपको धार्मिक जैसे आज की गम्मत में हमने सबसे पहले धार्मिक सुनवाओ, उके बाद में फिर सभी बनने हो चले जा रहे हैं। इसे भैया के अगर दार भात और रोटी तरकारी भर अपन खात रहो उतो मजा नहीं आए, संगे कहूँ चटनी मिल जाए, अथानो मिल जाए, दही मही मिल जाए, दूध मिल जाए, सलाद मिल जाए और चार चांद लग जाते हैं भोजन में। तो ऐसा ही अपनी जहाँ गम्मत है, सभी बनने लोकगीत हम आपके लाने सुनवा चलत हैं, अच्छे सोई मजाक के सोई हंसी के सोई। तो ऐसे अपन सुनत चलें बहुत अच्छी बात है, चिट्ठी लिखवे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फिर अपनी इतनी बात कहें के घूंघट में नैन छिपाउती, जब जब पनिया जाएं, पेजनियाँ खनकाउत हैं, सुहाल कहे नहीं जाएं, हाल कहे नहीं जाएं, कमर पतरी लचकारी और चलत मधुरी अंचाल, सलोनी मूरत प्यारी, कहत लखन कविराय, फंसे हैं हम झटपट में, तिरछी नैन कटार, चलत उनके घूंघट में।

हाँ तो किसान भैया हरो, और एक चिट्ठी हम फिर से उठाए थे और जो अटका बोलत हैं, उजली धरती काला बीज ज्ञान बांटने वाली चीज। और जय चिट्ठी अपने बहुत पुराने नियमित श्रोता हैं पंडित श्री राम पाठक, श्रीमती मालती बाई पाठक, सत धारा तेंदुखेड़ा वाले पंडित पुजारी, और जे बर्मान में रहते हैं, बर्मान सिंह ने अपनी चिट्ठी लिखे पहुंचाई है। लिखत हैं कि गम्मत कार्यक्रम ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर है, हम लोग नियमित सुनत हैं, अच्छो लगत है। आप और जितनी बातें करत हो वे सब मीठी लगत हैं, मने इन्ने अटका को जवाब लिखो नहीं पहुंचाओ, कार्यक्रम की प्रशंसा करी, चिट्ठी लिखो पहुँचावे के लाने अपन इनके धन्यवाद देते हैं। और फिर अपनी इतनी बात कह खो इन भैयान के लाने जो माइक के पंच वृक्ष को जानियो धार्मिक बड़ो महत्व, जामन बेरी में रहें सब गुणकारी तत्व, सब गुणकारी तत्व वृक्ष देते फल छाया, पर्यावरण के हेत पेड़ अनमोल हैं माया, कहत लखन कबीराय जन्म दिन में लगाओ वृक्ष, धन धर्म पुण्य सब मिलत हैं जहां हो पंच वृक्ष।

0: हाँ तो किसान भैया हरो, अपनो आज कुवट का आखिरी बेरा बोल रहे हैं। सुमत कुमार जैन जी की तरफ से आओ है उजली धरती काला बीज, ज्ञान बांटने वाली चीज जो अपनो आज कुवट का है। और जिन कलाकारन ने अपनी आज की गम्मत सजाई उनमें राम किशोर सूर्यवंशी समूहश्वर के संगे, राम कुमार चौधरी और उनके संगी साथी, अन्नपूर्णा शर्मा और उनके संगी साथी, रविशंकर श्रीवास्तव और उनके संगी साथी, और अवई अवई गा रहे हैं देवी सिंह दाहिया और इनके संगी साथी। और चिट्ठियाँ पहुँचावे के लाने हमारी तय को पता है कृषि जगत कार्यक्रम गम्मत द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर कटंगा जबलपुर मध्य प्रदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर है 14, पिन कोड है 482001। यही पता के संगे आज की गम्मत पूरी भई। अनुमति देव लखन भैया को और स्वीकार करो राम राम, जय जवान जय किसान।
1: किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं अब से कुछ ही पलों में। सुर्खियों में कार्यक्रम हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य।
1: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
2: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल, ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
3: नमस्कार।
2: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी, जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
3: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आस है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन, उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया।
2: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
3: देखिए, हमारा कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले ही उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
2: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
3: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
2: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
3: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।

0: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
1: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया। हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपम्प डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और अभी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुँचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुँचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
0: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था। आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
1: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुँच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1.55 करोड़ तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको रिशेल्डिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियाँ, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था, केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने PKC की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1 लाख करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है

0: कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहाँ की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था पर एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को ख़त्म कर दिया, नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुँच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था, तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी, उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती, वो पूरी देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे, कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहाँ पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती, और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता, और वो जो सुनते सबकी है वह करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पर वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम ला के देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी, तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा, और ना कभी देखेंगे।

0: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल।
1: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। और उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला, मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे ये उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है, मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए, उनसे सीखे हैं। जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं, तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
0: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
1: नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूँगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था, और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज़्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया, मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
0: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
1: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्रपान से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे, पर घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी, तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि ये आदमी

0: युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीज़ें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी, उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज़ तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया ऐसा नहीं है, पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊँगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में, डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, ये सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड PM ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया CR पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबिक्विक के फाउंडर और CEO विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबिक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबिक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबिक्विक ने करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबिक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो

0: कितना पैसा लगेगा, आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फ़ोन निकालते हैं और UPI से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें MobiKwik ने एक बहुत बड़ा सफ़र और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियाँ हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है, उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फ़ोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो UPI का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे MobiKwik की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
1: तो मतलब 17 साल के आपके सफ़र में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफ़र रहा, उसमें काफ़ी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी 3 बड़ी नीतियाँ थीं जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
0: तो इनमें काफ़ी नीतियाँ थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है, तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी, जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियाँ थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल DPI कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता, और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय, जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने?
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज़ करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज़ को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुलेगा, तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे।

0: एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहाँ पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गाँव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफ़ी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गाँव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से देखते
0: देखिए,
1: हैं?
0: डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: इंद्राज सिंह ने दीप।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर।
2: आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत प्रेम रतन धन पायो। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं पलक मुशाल और साथियों का गाया।

रतन धन पायो फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और अब आपको सुनवाते हैं शब्बीर कुमार का गाया फिल्म बेताब का ये गाना।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार संध्या, उसके बाद न्यूज़ एट 9 हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के

0: ये विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: लॉ, न्याय बंधु, कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.telly-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट 2 गुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक

0: विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून

0: कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में 1 विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
2: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase in Europe. More than 120 Indian startups, along with global investors, CEOs and technology leaders, will participate in the event. Prime Minister Modi will also hold bilateral talks with President Macron. Discussions are expected to cover defense, artificial intelligence, space, trade, education and other global challenges. Here in Nice, expectations are high that the visit will inject fresh momentum into one of India's most trusted strategic partnerships. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his 2-day visit, Mr. Modi will meet

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक

0: ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है, तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं, चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5,000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो, उसका नाम है योग आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की, तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे, और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको

0: परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञानपरक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि नो की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन और ई मायने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
1: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
0: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
0: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए, तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है। साहब स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने 2 चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया, नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई, उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर

0: रखकर देखा और उसमें सहभागिता की और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा। तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ। 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही,

0: ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे आईआईटी कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पर, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है,
0: संभव जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग जिस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहां पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपए एक फैमिली के कंट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। एक डेढ़ घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको डेढ़ घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक, पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं।
0: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं रादर देन योर ओन कंपोजिशन?
2: बिल्कुल है, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
0: अच्छा,
2: हम बोलते भी हैं कुल्फी फाइल्ड इट।
0: जैसे भी आपने एग्जांपल दिया संभव, जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया उसे।

0: टच दिया
1: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज व्हाट वी एज अ बैंड आल्सो डू.

0: कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं। बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिसी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. Ramayana का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिसी गुरु विदुषी शरण लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े ही विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है,

0: हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में
1: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंभ रामायण का विशेष उल्लेख किया।
2: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakha, Alarcha, the...
1: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद माननीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
2: Going and proposing to Rama and Lakshmana, from that rakshasi bhavam, the hand goes into a beautiful pallava.
1: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खां, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल सिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुरी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. Is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Tyagaraja, is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कांगड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कांगड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी, कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast.
2: Namaskar, Akashvani Samachar ke saath main Ratna Pandey. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे।

0: सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration

हमारी यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे। अभी अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।

हाँ सर, और कंसोल की घड़ी में सुबह के 5:06, 32:33, 34 सेकंड हुए हैं और डीजे प्रो टेस्टिंग सर। हेलो सर, कंप्यूटर नंबर 2 टेस्टिंग।